0: कलजुग रथगन का कूड़ अग्यर्थ वाहु महला पहला।
1: शाम कह सितंब स्वामी सच में अच्छे साचरे सबको सच समावे। ऋग कह रहया प्रभु राम नाम देवा मैसु नय लय प्राच जाय ना तुम कंतर पाहे। जुज में जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पाया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया। कल में भेद अतर्पण हुआ नौ खुदाई अलोपया नील बसले कपड़े पर तुरक ठाणी अमल किया। चारे वेद हो सचार पढ़े गुण तीन चार विचार पाओ प्रगत करे नी सदाए तो नानक मुखंतर।

0: तुम वारे जित मिले खसम संभालिया, जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा, सतगुर है बोहेता विर लैके न विचारिया, कर कृपा पार उतारिया, कर कृपा पार उतारिया।
1: जिन ऐसा हर नाम न चेते हो, से पाहे जब आए राम राज। हे मानस

वसरक पाटंग जे जानस ब्रह्मंग कर्मंग सापो करने चो कर्मंग कहो नान तेने चो त्यावे विन सत गुरु वाट न पावे पौड़ कपड़।

दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इस्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संधार दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमानियां दे मान नतानियां दे तान नियोटियां दी ओट तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवै प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गो व्रत न जाय तो टिटका ते जप माले तान मले शाखाय अंतर पूजा पढ़े गते बा संजम तुरका पाई छोटी ले पाखंडा नाम ले

निष्कानी करी निवाद छुरी विगाय तिन गलताप तिनकर ब्राह्मण पूरे नाथ को न पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सर्म धर्म का डेरा दू नानक रहया परपुर मथा टिका तिर तो तिका खाई हाथ छुरी जगत का सार नील बस्ता पैर वे प्राण ले ताले पूजे प्राण अपाखे आका कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे ना जाना देखे चौंका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटा वे मत पिटा अन्य साडा।

0: ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 20

0: 20 ट्रिलियन डॉलर की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पद की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेडिंग वेव 373.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र ए। आओ सुनदे हां गांधी चर्चा।

एडिसन ने महात्मा गांधी जी के प्रेरक प्रसंग चो गांधी चर्चा आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र सुनते हैं भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना।

0: जय हिंद जी संधु साहब बच्चे आलियो।
1: जय हिंद जी, जय हिंद रुड़िया राम जी, सुनाओ की हाल चाल आ?
0: हाल चाल तगड़ा, शुक्र मालिक दा, तू ही अपना दसो।
1: बहुत बढ़िया। देखो आप जिदा गल करते होंने कि समय के हिसाब न काम करने, कई बार समय तो पहले भी काम करने पैंदे है।
0: करने पैंदे है जी। देखो जिदा कहने भी जिदे घर दाने उहदे काम वाले भी सियाने हो जाता है। हरे चारा एक, क्योंकि जिम्मेदारी दे विच तुसीं अहम बड़ी गल कीती है, हरा चारा एक ऐसा है जिहदी असीं वेले सिर ब्योतबंदी नहीं, वेले तो पहला ब्योतबंदी
1: करनी जुड़ी है, बहुत जरूरी है जी। कई बार देखो आपां हुण पशु ज्यादा रख लैने, रकबा थोड़ा,
0: बिलकुल,
1: ते फिर समस्या आ गई। ते जे उन्हों आपां समय सिर ना बीजिया या समय सिर कट के ही ना पाया, पूरे जदों तत बने होंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, चारे नूं जदों समय सिर कट के पाइए, जदों पूरे तरीके नाल तैयार होवे।
0: बिल्कुल। नाले एक संधू साहब दूसरी गल ये भी आ जाती है कि जे असी सारा साल सस्ता दुध ते पैदा करना चाहते तो उहदे लई सानू सारा साल हरे चारे की ब्योतबंदी करनी पैनी
1: है। बहुत जरूरी है जी। नाले देखो रुड़िया राम जी, हुण तां सानू इहो जिहे तरीके आ गए भी कहिंदे भी रोज रोज हरा चारा कट के पाउणा भी बड़ा औखा लगदा।
0: औखा जी।
1: जी अचार बना लो उहदा।
0: हां, अचार
1: मक्की दा अचार बड़ा वधिया बणदा जी।
0: आ जिहड़े समें दीआं फसलां हुंदीआं ने ना, इन्हां दे विच जिद्दां तूं मक्की दी गल कीती, कोई मक्की जिद्दां आपां कहिंदे कि उस इस मौसम दे विच मक्की ते दूजे मौसम दे विच बरसीम, दोनों प्रमुख चारे है हाड़ी सौनी दे, ते इस करके जदों मक्की दी गल करदे आ क्योंकि मक्की दे विच इह सब तों ज़्यादा समर्था है कि इहदा अचार बना के असीं सारा साल वरतों कर सकते हैं।
1: नाले देखो खास करके बारिशां च बड़ा काम आउंदा,
0: काम आउंदा जी,
1: क्योंकि जे बाहर हुण मौसम ठीक नहीं ते कौन जाके उहनूं कट के लियाऊगा ते फिर पाऊगा, उहदी बजाय आपां ने

श्री राम के प्रेम में शिथिल पड़ गए अयोध्यावासी। मात्र दो ही कोस चल पाए थे कि दिन ढल गया। अतः उपयुक्त स्थान देख सबने बिना खाए पिए वहीं रात्रि विश्राम किया। उस रात सीता जी ने स्वप्न में देखा कि प्रभु के वियोग में भरत संतप्त शरीर लिए पूरे समाज के साथ वहां पधारे हैं। सभी लोग उदास और दुखी हैं। साधुओं की सूरत बदली हुई है। सीता का स्वप्न सुनकर श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चित्त की शांति के लिए उन्होंने स्नान आदि करके त्रिपुरारी का पूजन तथा साधु संतों का सम्मान किया। देवताओं मुनियों आदि का वंदन कर श्री राम उत्तर दिशा में देखने लगे, जिधर आकाश में धूल छा रही थी। पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते आ रहे थे। मन में चिंता हो आई, क्या बात है। उसी समय कोल फीलों ने भरत शत्रुघ्न के आगमन का समाचार सुनाया। श्री राम हर्षित हो गए। फिर ये सुनकर कि भरत शत्रुघ्न के साथ चतुरंगिनी सेना भी है, शंका हुई कि इस प्रकार उनके आने का क्या कारण हो सकता है।

इत्यस्य ग्रेटर नोएडा नगरे स्थिते इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इत्यत्र आरप्स्यते। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंच दिवसीयस्य अस्य आयोजनस्य उद्घाटनं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभाया अधिवेशनानंतरम एंटिग्वा बारबुडा इत्यस्य प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन इत्येतं मिलितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉ जयशंकर उक्तवान् यद् विकास सहकार क्षमता निर्माणं तथा जलवायु परिवर्तन संबद्धं सहयोगं च अग्रे वर्धते। सह राष्ट्रमंडलस्य शासनाध्यक्षानां सम्मेलनस्य सफलतां प्रति भारतस्य दृढां प्रतिबद्धताम् अपि प्रकटितवान्। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेशस्य एतस्य समीपे दक्षिण ओडिसायाः च उपरि स्थितस्य गभीर न्यून दाब क्षेत्रस्य प्रभावेण ओडिसायाः विभिन्नेषु भागेषु प्रबलाति प्रबल वृष्टिः अनुवर्तते। अनेन संवेदनशीलेषु क्षेत्रेषु जलाप्लावः मार्गेषु यातायातस्य व्यवधानं तथा आप्लावन सदृशी स्थितिश्च उत्पन्नास्ति इति वार्ताः।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: मन की बात, मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात ऐतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करनगे नालों नाल। नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल DD न्यूज, DD भारती, DD इंडिया ते DD किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर, FM 102.7 मेगाहर्ट्स, DTH दी AIR पंजाबी सेवा, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती, FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर, FM 100.9 मेगाहर्ट्स ते FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा, आकाशवाणी पटियाला, विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

0: कौन चुमेगा जित दा शिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक-वक चैनल्स ते FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स ते इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।

यादों में तेरी याद थी, क्या याद थी, कुछ याद नहीं। तेरी याद में सब कुछ भूल गए, क्या भूल गए, कुछ याद नहीं। बस याद हो तुम, सिर्फ याद हो तुम, क्यों याद हो तुम, कुछ याद नहीं। यादा लो जी, याद रखना चाहिए है कि असी की याद रखना है ते की नहीं रखना। असी बहुत कुछ भुल जाते हैं और भुलाना जरूरी भी है, और कई बार असी याद रखते हैं क्योंकि याद रखना भी जरूरी है। असी जो इतिहास की गल करते हैं तो इतिहास के जाके असी बहुत कुछ इतिहास का याद रखते हैं ताकि सानू साढ़े भविख तो वर्तमान बनाने के कोई रुकावट ना हो। मेरी जो सोच जाती है इधर उधर, मैं जो थोड़ा जहा सोच न खिलारा जहा पाने की कोशिश करता हाँ, तो उस वेले जो मैं अज की गल करा तो बहुत सारिया यह जी शख्सियत हैं जी कि साढ़े को रुखसत हो गई। मेरी सोच चली जाती है 25 सितंबर 1955 रुखमा बाई ज रकमा बाई, एक भारतीय नारी जो पहली अभ्यास करने वाली नारी डॉक्टर के विचों एक सी। अज दिन उन्होंने भावें आखिरी साह लाए सी, पर आने वाली पीढ़ियों तक एक औरत नूं उन्हां वेलियां दे विच, उन्हां दहाकियां दे विच 1955 दे वेले दे विच एक सुनेहा दे दिता कि औरत किसी नालों घट नहीं, अगे वधना होवे, पढ़ाई करनी होवे ते शायद मौके की तलाश करन दी भी जरूरत नहीं हैगी, मौके आप ही आ जांदे आ दिल दे विच जज्बा होवे। अज दे दिन जदों मैं थोड़ा जा अगे जाके देखदा ते अज ही आपां याद करदे आ अज दे दिन जन्मे 1916 के उ सोच साड़ी चली जाती है। 25 सितंबर भारतीय सियासतदान अटुट मानवतावाद विचारधारा के समर्थक भाजपा के पूर्वज राजनीतिक पार्टी जन भारतीय जन संघ BJS के नेता दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय ने 1940 के दहाके के अपने आदर्शों को फैलाने के लिए मासिक प्रकाशन राष्ट्र धर्म जिहदा मोटे तौर दे उत्ते अर्थ है राष्ट्रीय कर्तव्य वह शुरू किया। सभ्याचारक गतिविधियां दे विच मोहरी कहाउण वाले दीनदयाल उपाध्याय समाज सुधारक दे रूप दे विच लोक उन्हां नूं जाणदे ने। कई गांधीवादी समाजवादी सिद्धांतां जिवें सर्वोदय, स्वदेशी, जनसंघ दे अधिकारक राजनीतिक सिद्धांत ते अटुट मानवतावाद का खरड़ा तैयार करने लई उन्हां नूं जाणिया जांदा है। मथुरा जिले के नागला चंद्रबन पिंड उन्होंने जन्म होया, जिन्हों जिस स्थान हूँ भी दीनदयाल धाम के नाल जाने जाता है।

0: जग तेनू छड़ के तू पग तेनू कर ले दिन तेरा होना है सहाई जिंदी ये दिन तेरा होना है सहाई जिंदी ये दिन तेरा होना है सहाई
1: जग ते दे वास के बथे।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, 8 ਵਜੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
3: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सबको धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
4: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने

0: श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
1: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की, रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
0: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
3: जिस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया, अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
6: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
7: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर

0: सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
2: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीकी ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं और सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जन कल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
3: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
4: जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्य में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच

0: जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है। युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनपिंग से मिलकर काम करने का वादा।
1: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजन बैजा

हुणे तुसीं शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी दा सितार ते वजाया राग ललित सुन रहे सी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दा यह जलंधर केंद्र है। पेश ने कुछ गजलां। सब तो पहला आओ सुनते हैं गुलाम अली की आवाज़ के विच ए गज़ल।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करनगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

0: अमनदीप कौर बोल रहे सर, पंचकुला जो।
1: हाँ जी अमन जी, की हाल चाल है?
0: हाँ जी ठीक है सर, आपने सुनाओ। वधिया
1: वधिया वधिया जी, ते की कर दे सी?
0: कुछ नहीं सर, कॉल फसा मिली था दी।
1: चलो मिल गई, ते गीत कैसा सुनना तुसी दसो?
0: गीत तो किशोर कुमार दी बात मुकद्दर का सिकंदर सुना दो, और साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।
1: जी बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए, धन्यवाद।
0: थैंक यू सर, सो मच
1: जी। सो इस दोस्त जिन्होंने अपनी फरमाइश दर्ज करवाई है 0181-4172-3421-73 मिला के, तुसी भी कोई भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो।

0: जी एक दोस्त आई ने फोन कॉल थे। हेलो।
1: हेलो सर, सत श्रीकाल सोनी साहब
0: हाँ जी, सत श्रीकाल जी।
1: जी। मैं तपा मंडी शमशेर सिंह हांस बोल रहा सर।
0: हाँ जी, शमशेर सिंह हांस जी, की हाल चाल है?
1: सर बहुत ही बढ़िया, थोड़े नाल गल अज हो गई, अभी पैने देर बाद करो, बड़े बढ़िया हो गए सर।
0: देखो साडे वी इसे तरह नाल हो जांदे आ, एदां ही गल्लां बातां दे विच टाइम पास हो जांदा, सोहणा है ना? इसे तरह के नाल ही थोड़ी सांझ बन जाती है।
1: जी सर।
0: हाँ, यही तो जिंदगी है।
1: दूरदर्शन के थोड़े दर्शन हो जाते सर, चलो हम आवाज आना सर, सानू बहुत मजा आ रहा है जी।
0: ठीक है जी, तो केड़ा गीत सुनना जी तुसी?
1: अपना दिन ने सुन याद किया जी, आशा जी की अपना रफी साहब का गाया जी।
0: हाँ जी,
1: मैं सूरज हूँ तू मेरी किरण संग तेरा रहे सर।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, फोन करो।
1: धन्यवाद सर।

0: पर छुपाए रखा शोला दबाए रखा। हुण तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम हैलो फरमाइश। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 11 बज रहे ने। हुण तुसी सुनोगे हिंदी च समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता

0: की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना, इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए सेवा, संतुलन, धैर्य, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदनशीलता और संवाद के 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हर भाजपा कार्यकर्ता सेवा भाव के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए मार्ग पर चलने पर गर्व महसूस करता है। सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ यात्रा के अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का भी आग्रह किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों को बनाने और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एनालॉग पनीर का अर्थ है कि जो वास्तविक दूध के बजाय अन्य सामग्री से बनाए जाते हैं। प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियमन 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज श्रीनगर स्थित आकाशवाणी केंद्र में उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय चैनल प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उत्तरी क्षेत्र के आकाशवाणी केंद्रों के कामकाज और प्रसारण की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय चैनल प्रबंधकों के सामने आ रही समस्याओं को समझना, उनकी प्रतिक्रिया लेना और समस्याओं के समाधान तलाशना है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 484.6 अंक हासिल किए। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये

रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री होना ने जामा मस्जिद रोड तो हाजी इसहाक लोलामणि, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शहरी, मनदीप सिंह दीपा बस स्टैंड जलाल दीवाल लुधियाना तो सानू फरमाइश भेज रहे ने। छत्तीसगढ़ दंतरेगी तो लीलावती वनीता रुद्र शांति ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। जलालाबाद वैसट तो सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, दिशानी ते निमित आहूजा। गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जयतेग विर्क, मीका विर्क सानू फरमाइश भेज रहे ने। बस स्टैंड बुरज हनुमानगढ़ फाजिलका तो फरमाइश भेज रहे ने जी। रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा। मेन बाजार शेरपुर तो प्रभजोत ते मनजोत। जिला यवतमाल तो सानू फरमाइश भेज रहे ने जी अनिल बुरांडे, ऊषा अनुश्री ते धनश्री। कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरुवंश सिंह जौड़ा। बेअंत सिंह बस स्टैंड जलाल दीवाल जिला लुधियाना तो फरमाइश भेज रहे ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला तो बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। बक्सर बिहार तो शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुमित, रमेश साहू। डुमराव बिहार तो डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम ते दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर तो श्रद्धानंद, अभ्यानंद, परमानंद। सारिमपुर बक्सर तो राज एस डी अंसारी, आसमा खातून ते इकबाल मस्तान। राजस्थान तो रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान ते इरफान खान। जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल ते विलिस डिकेस्ट्रो। रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तो सानू फरमाइश भेजी है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा ते इन्हां दा पूरा ही डागला परिवार। कुलवंत सिंह, लवराज सिंह औलक ये सानू फरमाइश भेज रहे ने फिरोजपुर तो। मलोड़ तो सतीश मिगलानी, विवान, वीर सिंह, आकाशदीप ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। बस स्टैंड पिंड फरवाही जिला संगरूर तो राजू अंसारी, बाबू पिल्लू, लाली अंसारी, शौंकी। जाला टाउन एसबीएस नगर तो विनोद संधु, कमल रितेश, आकांक्षा ते परतभूषण संधु। मुकाम पोस्ट कालेव गांव जाफराबाद तो सानू फरमाइश भेज रहे ने जी श्री सुधाकर राजे, जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे, जगुताई राजे ते कुमार संचित, प्रथमेश सरवत ते हर्षिता। इन्हां दे बहुत सारे साथी सानू फरमाइश भेज रहे ने जी। बीड शहर महाराष्ट्र तो नंद किशोर घटे, संगीता, साक्षी, अंजलि, बाला साहेब, जयश्री महेत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल, पीबी कुलथे। आहुन सुनते ना सारे की फरमाइश ते अमर नूरी की आवाज़ विच एक गीत।

0: इस गीते नाल ही प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी हुण खत्म होया। असी आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। इस वेले 12 बजे हुण तुसी सुणोगे हिंदी च समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों बस कुछ ही पलां च।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना, इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है

0: तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
0: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साखना के साथ बैठक में यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभाव तथा बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। नई दिल्ली में परियोजना के शुभारंभ पर श्री यादव ने कहा कि इससे राज्य वन संस्थानों में नई सुविधाएं विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में कल रात मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्री तमांग ने स्थानीय अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले मुक्केबाज सचिन सेवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत अब 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: इस वेले 12:05 हो रहे ने। हुण पेश है परिवारिक प्रोग्राम वसदी फेड़ी।

0: नमस्कार
1: वसदे बेड़े प्रोग्राम लेके हाजिर हां जी मैं प्रिया ते मेरे नाल ने एक बहुत खूबसूरत आवाज ते खूबसूरत जे रंग दे सूट पाके
0: नमस्कार जी प्रभजोत वल्लो भी प्यार प्यार नमस्कार ते सारे दा बहुत बहुत स्वागत साडा प्रोग्राम वसदे बेड़े दे विच
1: जी ते प्रभजोत जी तुसी एक चीज नोट कीती
0: की
1: भी अज असी ते तीन औरतां बैठियां ने एक फीमेल साडे नाल ने जो की कंसोल चला रहे ने ताकि आवाज जेड़ी है साडी ओ साडे सरोतियां तक पहुंच सके ते सारे अज हरियाली हरियाली छाई हुई है
0: जी कुछ मौसम दा भी हुंदा है
1: तकाजा बिल्कुल

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138

0: जी वैसे वाकई ना जे चरखे वाल जो पुरानिया सवाणियां जो चरखा कतदिया सी ना ते वाकई याद करदिया सी अपने कदी अपने साई नूं ते कदी अपने भरा नूं
1: बिल्कुल ते अज तां देखो जी वेहड़ियां दे विच चरखे तां नहीं पर अज तों बाद जदों वी तुसीं चाट पकौड़ी वल वेखना ते तुसीं याद जिहड़ा है ना ओहनूं नहीं करना तुसीं सिर्फ अजवाइन नूं ही करना
0: जी बिल्कुल
1: यही कहना चाहुंदे सी
0: बिल्कुल यही कहना चाहुंदे सी मिले तो होके आके अजवाइन जरूर थोड़ी जी जरूर खा लियो अज ते ताकि तुसी बीमार जेड़ा ओ ना हो
1: यानी इजाजत है चाट पकौड़ी सारी चीजा खान
0: बिल्कुल
1: आज दे दिन इजाजत
0: जी बिल्कुल पर ध्यान नाल खाओ बीमार
1: ना गल असी सेहत दी भी कीत करदे रहने कि सेहत दा बहुत ध्यान रखना
0: बिल्कुल जी और ए महीना पूरा दा पूरा प्रिया असी पौष्टिक आहार जेड़े ने ओ लेने ने है ना असी समर्पित कीता है पूरा दा पूरा महीना पर वैसे तो देखो पूरा महीना नहीं पूरा साल ही समर्पित होना चाहिए
1: बिल्कुल ते पौष्टिक आहारां दी बहार लगन वाली है सर्दियां दा मौसम
0: जी बिल्कुल और किते साग होना है ते किते फिर अपना गाजर मूलियां हर तरह दी चीज जेड़ी है ओ साडे कोल आ जानी है साडी प्लेट दे विच
1: बहुत सारे मोटे अनाज ते नाल दलिया है जिवें है ना उना दे विच गाजरां मटर गोभी पा पा के आ हा हा की स्वाद जेड़ा खाना बनाया जा सके
0: बिल्कुल जी और इस करके हमेशा तुसी कोशिश करो कि पौष्टिक आहार लो तुसी मोटे अनाज दी गल कीती रोज ही एक चीज जेड़ी है ओ नहीं खांदे रहना जे तुसी रागी खा रहे हो ते फिर कल नु बाजरा खाओ और उस तो बाद तुसी कुछ होर खा सकदे हो इसी तरह बदल बदल के जेड़ी है वो चीज खांदे रहो
1: जी ते मेनू लगता है कि समय दी सुई भी कह रही है कि वक्त बदल रहा है
0: जी ते इजाजत लेनी चाहिए चलिए फिर
1: जी
0: नमस्कार।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਵਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस समय गृह मंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: शामिल हो रहा ये 4th संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है

0: उसका दुनिया ने परिचय किया, दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया, तीसरे में यूपी में आए और चौथे में यूपी के विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में 8 स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपे के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असि आकाशवाणी ती जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 1:05 हो रहे ने। हुण पेश है प्रोग्रामा दा वेरवा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी जगजीवन सिंह तों प्रादेशिक खबरां सुनो। केंद्रीय समाजिक न्याय ते शक्ति मंत्री वरिंदर कुमार ने कहा है कि नशीले पदार्थों की दुरवरतों पूरे देश लई इक वड्डी समाजिक चुनौती है। नशा मुक्त भारत बनाने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे नाल जूझ रहे लोगों की मदद करने ते उन्हां नूं मुख्य धारा विच शामिल करने लई नशा मुक्त भारत मुहिम शुरू की है ता जो उह सूबे अते देश दोवां दे विकास लई अपनी ऊर्जा दा योगदान पा सकण। अज चंडीगढ़ विच मीडिया नाल गलबात करदे होए मंत्री ने कहा कि इस उद्देश नाल भारतीय जनता पार्टी सूबे च नशा मुक्त पंजाब यात्रावां कढ रही है। भाजपा के कौमी प्रधान नितिन नवीन द्वारा 18 सितंबर नूं पठानकोट ते बाद विच होर सीनियर भाजपा नेतावां अते केंद्रीय मंत्रियों द्वारा 4 पड़ाव शुरू कीतियां गईआं। इह यात्रावां लोकां नूं नाल लैके नशियां अते भ्रिष्टाचार विरुद्ध जागरूकता फैलाउण दी अपनी मुहिम नूं जारी रखणियां ने। सूबे विच विगड़दी कानून व्यवस्था की स्थिति एक होर गंभीर चिंता का विषय है। यह यात्रावां 30 सितंबर नूं जलंधर विखे समाप्त होणगीआं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीते दिन सूबे के उन्होंने 3763 पिंडां दे सर्वपक्षी विकास अते समूहिक विकास लई 750 करोड़ रुपए तो वध दे व्यापक प्रोजैक्ट का ऐलान किया है। इत्थे अनुसूचित जाति एससी वर्ग की आबादी 40% तो वध है। समाजिक न्याय अधिकारता अते घट गिणती विभाग के कामकाज की समीक्षा लई मीटिंग की प्रधानगी करदे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहलकदमी नाल समाजिक न्याय ते इन्हां पिंडां दे सर्वपक्षी विकास नूं वड्डा हुलारा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेक पिंड नूं शुरू विच बिना किसी शर्त दे 20 लाख रुपए का फंड जारी किया जाएगा। पीएयू कृषि विज्ञान केंद्र श्री मुक्तसर साहब वालों गिदरवाह च झोने की पराली के सुचजे प्रबंध संबंधी ब्लाक पद्धरी जागरूकता कैंप लगाया गया। इस कैंप विच ब्लाक के वक्ख वक्ख पिंडां दे लगभग 120 सूझवान किसान वीरां ने भाग लिया। कैंप दौरान सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार ने किसानों को पराली साड़न के माड़े प्रभावों बारे जागरूक किया। इस तरह

फौजी वीरों जय हिंद। आज दे प्रोग्राम लेके हाजिर है सोनिया सैनी। सो प्रोग्राम दा आगाज करते हैं फिल्म प्रेम रोग दे गाए इस गीत नाल, जिसनू आवाज दिती है लता मंगेशकर ते सुरेश वाडेकर ने।

0: आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम फौजी वीरां लई। प्रोग्राम च वेला हो गया जी अंतराल दा, सो मुड़ वापिस आने आ अंतराल तो बाद।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
4: वही मनु, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
4: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
4: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन एचआईवी किवें संक्रमित सुई सरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
0: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनने वालों का स्वागत करते हैं आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से। तुसी इस वेले सुन रहे हो प्रोग्राम फौजी वीरां लई। प्रोग्राम च हुण सुनवा जा रहे हैं फिल्म कामचोर दा गीत। आवाज़ा ने लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दी।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मनु, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सारयां दे योगदान अते हिस्सेदारी नाल ही विकसित भारत दा संकल्प साकार हो सकदा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी नाल आपस च जुड़ रही दुनिया च उभर रही चुनौतियां दा असरदार ढंग नाल हल इकल्ले रह के नहीं कीता जा सकदा। मेक इन इंडिया पहलकदमी ने अज अपने 12 साल पूरे कर ले ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस पहलकदमी का उद्देश अजिहा बुनियादी ढांचा उद्यम अते नवीनता तैयार करना है जिस नाल भारत विकास ते खुशहाली दे राह ते अगे वध सके। उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो अज ग्रेटर नोएडा च इंडिया एक्सपो सेंटर च शुरू होया। भारत दीआं मर्दां ते औरतां दीआं कबड्डी टीमां एशियाई खेडां दे फाइनल च पहुंच गईआं ने। हुण खबरां विस्थार दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सारयां दे योगदान अते हिस्सेदारी नाल ही विकसित भारत दा संकल्प साकार हो सकदा है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान तहत वाराणसी तों वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राही गलबात कीती। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हां विच जीवन नूं दिशा देण वालियां कदरां कीमतां पैदा कीतियां, जदकि काशी ने उन्हां कदरां कीमतां च सेवा दे अणगिणत रंग जोड़े। उन्होंने खुशी जाहर कीती कि नौजवान भी सेवा दे वख-वख रंगां नाल इस यात्रा च वध चढ़ के हिस्सा लै रहे।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों दौरान देश में शहरों और पिंडों विचकार पाड़ा काफ़ी घटिया है। पिंडों में बुनियादी ढांचे सुधार होया है और देश की औरतों में आत्मनिर्भरता वधी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने कहा कि हर बीजेपी वर्कर सेवा की भावना पंडित दीनदयाल उपाध्याय वालों दिखाए राह चलन से माण महसूस कर

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत को हर एक के तआवुन से ही हकीकत की शक्ल दी जा सकती है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा यात्रियों से बातचीत की। हुकूमत ने अगले महीने से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 70,000 देही नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील के वज़ीरे ख़ारजा ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अलग IBSA मुज़ाकरात फोरम के दौरान मीटिंग में दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त न करने के अज़्म को दोहराया। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बहुत से इलाकों में हवा के दबाव के सबब मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही हुई। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि अगले 12 घंटे में हवा का कम दबाव कमजोर पड़ जाएगा। और जापान में जारी एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर के एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर एक की शमूलियत और तआवुन के साथ ही विकसित भारत को हकीकत में बदला जा सकता है। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जाने वाले सेवा यात्रियों से वर्चुअल वसीले से बात करते हुए जनाब मोदी ने ये बात कही। जनाब मोदी ने उजागर किया कि वडनगर ने उन्हें ऐसी इकदार दी हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को बनाया है, जबकि काशी ने इन इकदार में अनगिनत रंग भरे हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि खिदमत के गुनागुन रंगों के साथ नौजवान भी इस सफर में हिस्सा ले रहे हैं।
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: श्री मोदी ने कहा

0: कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000

0: के कि यही सात सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
3: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर

0: प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
1: ये रेलगाड़ी समाख्याली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
4: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
3: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
5: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई

0: हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्ते।
1: आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 2:30 होए ने। हुण पेश है रंगली धरती प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुसी सुनोगे अमरजीत सिंह रिखिया दे गाए लोक गीत। संगत कलाकार ढोलक ते प्रदीप कुमार, हारमोनियम राकेश कुमार, मैंडोलिन राहुल कुमार।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करनगे नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

0: हुण तुसी सुन रहे सी रंगली धरती प्रोग्राम च अमरजीत सिंह रिखिया दे गाए लोक गीत। संगत कलाकार ढोलक प्रदीप कुमार, हारमोनीयम राकेश कुमार, मैंडोलिन राहुल कुमार। असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले दोपहर के 3 बज रहे ने। हुण साडी अज की पहली सभा के प्रोग्राम इत्थे ही खत्म हुंदे ने। अपनी दूजी सभा के प्रोग्राम लैके शाम 4 बजे थोड़ी सेवा च फिर हाजिर होवांगे।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: नमस्कार, डीटीएच डीएल पंजाब सेवा दल जलंधर के अंदर है। इस वक्त इन माचुके ने समा हो रहा है न्यूज हेडलाइंस का।

श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सारे दे योगदान ते हिस्सेदारी नाल ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि तेजी नाल आपस विच जुड़ रही दुनिया विच उभर रही चुनौतियों का असरदार ढंग नाल हल इकल्ले नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिया पहलकदमी ने आज अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस पहलकदमी का उद्देश्य अजिहा बुनियादी ढांचा उद्यम ते नवीनता तैयार करना है जिस नाल भारत विकास अते खुशहाली दे राह ते अगे बढ़ सके। समाजिक न्याय ते शक्तिकरण बारे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि नशीले पदार्थों की दुरवरतों पूरे देश लई एक वड्डी समाजिक चुनौती है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीते दिनों सूबे विच 3763 पिंडों दे सर्वपक्षी ते सामूहिक विकास लई 750 करोड़ रुपए तो वध दे व्यापक प्रोजेक्ट दा ऐलान किया। इन्हां पिंडां विच एससी वर्ग की आबादी 40% तो वध है। पंजाब सरकार वल्लों 450 सहायक सब इंस्पैक्टरों की सीधी भर्ती नूं मंजूरी दे दित्ती गई है। खजाना मंत्रालय ने ऐलान किया है कि गाका की सहूलत लई सारे जनता खेत्र के बैंक अते खेतरी देहाती बैंक एतवार 27 सितंबर नूं खुले रहेंगे।

आरजी दोस्तों, इस वक्त प्रोग्राम चल रहे हैं चिट्ठियां मिठियां, तो मैं आरजी पूनम सिटी इस वक्त थोड़े में जुड़ी हुई हैं। कुछ चिट्ठियां भी मेरे हाथ से ने पढ़ लेने एक एक करके। चिट्ठी आई है पिंड पंगाला जिला फाजिलका तो, लिखन वाले ने जगतार गिल, गुरमीत गिल, नाजम गिल, सुखमन गिल, कमलदीप गिल, एस के शर्मा, जगतार टेलर, तो ये कलाकार कुलदीप मानक की आवाज़ में गीत सुनना चाहते हैं, जो कि आपां तुहानू जरूर सुनावांगे थोड़ी ही देर च। इन्हां तों अलावा जिन्होंने सानू चिट्ठी लिखी है, उन्हें मुल्लापुर मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन, दीपक जैन, ते पुरानी मंडी मुल्लापुर तो राजेश जैन, अरुणा जैन, आजम जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन, ते नगीना जैन। इन्हां तों अलावा जिन्होंने सानू चिट्ठी लिखी है, उन्होंने नाम ने पिंड मूलियां वाली जिला फाजिलका तो विनोद काठपाल, प्रवीण काठपाल, हनी काठपाल, दीक्षा काठपाल, ते मन्नत काठपाल। इन्हां तों अलावा चौधरी प्रेम सिंह ते महिंदर सिंह ने भी सानू चिट्ठी लिखी है, ते इन्हां सारयां दी ही फरमाइश ते असी तुहानू अगला गीत सुनान जा रहे हैं कुलदीप मानक की आवाज़ में श्री फरहाद। आओ इंजॉय करते हैं इस गीत नूं।

हाँ जी दोस्तों, इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियां मिठियां आरजे पूनम सेठी दे नाल। ते हुण आपां थोड़ी जिहियां होर चिट्ठियां पढ़ लैंदे हां। चिट्ठियां आईयां बहुत सारियां ने, एक एक करके आपां सारियां पढ़ांगे तुहाडे सामने। चिट्ठी आई है मुक्तसर तों, लिखण वाले ने बब्बू सिंह तीमन, बलजिंदर कौर तीमन, रवनीत निशू ते भूपिंदर। इन्हां तों इलावा सानू जिन्हां ने चिट्ठी लिखी है उन्हें एक मैसेज भी लिखते ने कि मुस्कुराहट भी एक खुशी है, लीजिए और दीजिए, कुछ कम नहीं होगा। पंचकुला सेक्टर 9 तो लिखने वाले ने आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ढिंगरा। इन्हों अलावा जिन्होंने सानू चिट्ठी लिखी है उन्होंने नाँ ने श्री गंगानगर तो बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा। फिर चिट्ठी लिखी है आदर्श नगर मलौट तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा ते निवान शर्मा ने। जिहड़ी अगली चिट्ठी आई है वह आई है राजस्थान तो, लिखते भी ने मारो प्यारो राजस्थान। ते लिखन वाले ने सादुल शहर तो ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। ते ए हरजीत हरमन दी आवाज़ विच गीत सुनना चाहते ने जो कि असी लभ लिया है, गल दिल दी दस सजना। आओ सुनने हैं गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत है, इंजॉय करते हैं इस गीत नूं।

चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। इन्हों तो अलावा जिन्होंने चिट्ठी लिखी है उन्होंने नाम ने आदर्श नगर मलोट तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा ते निवान शर्मा। फिर पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो सोहन सिंह बूक, निशान सिंह बूक, सीरत कौर, कीरत कौर, दादी जसवंत कौर, राज मिस्त्री, पिंड माहुआणा बोदला तो ढानी नेड़े थाना अरनी वाला तो सुरिंदर कौर बूक, बलविंदर कौर बूक ते नोह रीना बाई। ते इन्हां ने फरमाइश की है कि गुरदास मान की आवाज़ में गीत सुनना चाहते ने। बहुत ही खूबसूरत गीत है, रोटी हक दी खाइए। आओ सुन लें गीत।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियां मिठियां, ते मैं आरजी पूनम सिटी इस वक्त इस प्रोग्राम नु पेश कर रही हां। वक्त खंभ ला के उड़ जांदा है जदों साथ तुहाडे वर्गे प्यारे स्रोतियां दा होवे। चिट्ठियां मिठियां ते आखरी 15 मिनट बाकी ने, आओ इन्हां आखरी पलां नु होर भी यादगार बनाइए। कुछ होर चिट्ठियां भी आपां पढ़दे हां। चिट्ठी आई है साढ़े रेगुलर स्रोते ने, बहुत रेडियो दे कहिंदे ने कि बहुत अपने आप नू दसदे ने कि 25-30 साल तो साढ़े नाल जुड़े हुए ने। इन्हों का नाँ है पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल, चकला बाजार समाना तो। इन्हों अलावा चिट्ठी आई है गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तो, लिखण वाले ने हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक। इन्हों अलावा जिन्होंने सानू चिट्ठी लिखी है उन्होंने नाँ ने मलोट तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, जिला मुक्तसर पिंड मोहल्ला तो पॉल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दिशा मोहल्ला तो दर्शन बराड़, मलकीत कुड़ियाना। फिर चिट्ठी आई है जिला फाजिलका तो, पिंड कुड़ियाना तो भोला सिंह सुहाग, डॉक्टर अमनजीत सिंह, सुखमंदर कौर, अमृतपाल कौर, पोत्री रितमनजोत, गुरतेश्वर जो कि उन्हों का पोत्र है, दोस्त अमृतपाल सिंह, बलतेज सिंह, फौजी हकीक सिंह पट्टी वाले, तो ये लाल चंद यमला जट का कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। गीत आपां तुहाड़े वास्ते लभ लिया है, वो आप थोड़ी ही देर जरूर सुनांगे। इस चिट्ठी तो बाद एक होर चिट्ठी जिहड़ी मैं पढ़न लगी हाँ, ये आई है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र तो, इन्हों के नाँ ने अभिजीत गुआनकर राही, श्रीमती सरिता गुआनकर, प्रिंस एकांश गुआनकर। फिर बदलापुर मुंबई तो इन्हों के कुछ सज्जन मित्र ने, रिश्तेदार ने, उन्होंने भी नाँ लिखे ने, सिद्धांत गुआनकर, प्रमिता गुआनकर, अर्जुन गुआनकर जिन्होंने प्यार नाल टुकटुक कहिंदे ने, ते कुछ होर भी सज्जन मित्र ने, रिश्तेदार ने जो कि नागपुर तो ने, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर तो। उन्होंने नाँ ने विशाली, शैलेश गुआनकर, सुमित गुआनकर, कुमारी ध्वनि गुआनकर जिन्होंने प्यार नाल परी भी कहिंदे ने। ते जिद्दां कि मैं तुहाडे नाल वादा कीता सी कि मैं तुहानूं गीत सुनावांगी, लाल चंद यमला जट दी आवाज़ विच गीत दे बोल ने मेरे बाजरे दी राखी, आओ सुनदे हां गीत।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठिया मिठिया। मैं आरजे पूनम सेठी इस वक्त तुम्हारे नाल जुड़ी हुई हाँ। सफर अजे खत्म नहीं होया मेरे दोस्तों, चिट्ठिया मिठिया की महफिल पूरे रंग विच है। कड़ी दियां सुइयां भावें अगे वध रहियां ने, पर साडा उत्साह अजे भी ओना ही है। इस आखिरी दौर विच मैं लैके आ रही हाँ तुहाडियां ओ फरमाइशां जो सीधा दिल ते दस्तक दिंदियां ने। बस रेडियो नाल जुड़े रहो ते मानते रहो इस खूबसूरत दोपहर का आनंद। हुण आपां प्रोग्राम नूं अगे वधाउने हां, कुछ होर चिट्ठियां पढ़दे हां। चिट्ठी आई है पिंड खाने दी ढाब मलोट तों। खाने की ढाब। शमशेर सिंह कौलदर, जसविंदर कौर, करन प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तरनवीर ते मनताज ने चिट्ठी भेजी है। इन्हों तो अलावा चिट्ठी आई है जमशेदपुर तो। लिखण वाले ने हरजिंदर सिंह पाठिया, एंजल पाठिया, नवनीत पाठिया ते पप्पी पाठिया। फिर चिट्ठी आई है वार्ड नंबर 10 पुरानी मंडी मुल्लापुर तो। लिखण वाले ने बिट्टू जैन, मट्टू जैन, दीपक जैन, गौतम जैन, राजेश जैन, अरुणा जैन, संजीव जैन, नीला जैन, विक्की जैन ते विंदू जैन। फिर चिट्ठी आई है पिंड आजम वाला, तहसील फाजिलका तो। सोहन सिंह बुक, निशान सिंह बुक, सीरत कौर, कीरत कौर, दादी जसवंत कौर। फिर कुछ होर भी सज्जन मित्र है उन्होंने नाम लिखे ने। राज मिस्त्री पिंड महुआना बोदला तो, सुरिंदर कौर बुक, बलविंदर कौर बुक, नू रीना बाई ते अमर लाल। फिर चिट्ठी आई है करणवीर हाउस, गुरु गोबिंद सिंह नगर, पूछो कैंचिया तो। लिखण वाले ने प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर सुरिंदर, दपिंदर वरिंदर ते सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन ते अभिजोत। ते लिखते हैं कि पेशकर्ता नूं सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल तुहानूं वी साडे वल्लों। फिर चिट्ठी आई है मेहस गेट नाभा तो, सोमदत्त कैरव, ज्योति राणी ते गुरमन्नत वल्लों। ते इन्हां ने फरमाइश की है कि हरजीत हरमन की आवाज़ में यह गीत सुनना चाहते ने। ते आपां बहुत ही खूबसूरत गीत लभ लिया। गीत दे बोलने कोलों लंघदी, आओ इंजॉय करदे इस गीत नूं।

हाँ जी दोस्तों, आज का सफर बहुत ही खूबसूरत रहा। तुहाड़ियां चिट्ठियां ने आज मेरा ते सारे श्रोतियां दा दिन बना दिता, पर हुन कड़ी दियां सुइयां कह रही ने कि आज लई बस इन्ना ही। हुन मैं चलदी हाँ, पर बहुत जल्द फिर हाजिर होवांगी इसे जगह इसे समय। सुनते रहो DTH दी एयर पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र। मैं हाँ तुहाड़ी अपनी RJ पूनम सेठी। रब रखा।

0: अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीरा
2: सारे योगदान हिस्सेदारी के नाल ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि तेजी नाल आपस विच जुड़ रही दुनिया विच उभर रही चुनौतियों का असरदार ढंग दे नाल हल इकल्ले रह के नहीं किया जा सकता। मेक इन इंडिया पहलकदमी ने आज अपने 12 साल पूरे कर ले ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस पहलकदमी का उद्देश अजिहा बुनियादी ढांचा उद्यम ते नवीनता तैयार करना है जिस नाल भारत विकास अते खुशहाली दे राह ते अगे वध सके। समाजिक न्याय अते शक्तिकरण बारे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि नशीले पदार्थां दी दुरवरतों पूरे देश लई एक वड्डी समाजिक चुनौती है। भारत दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीते दिनी सूबे विच 3763 पिंडां दे सर्वपक्षी अते सामूहिक विकास लई 750 करोड़ रुपए तो वध दे व्यापक प्रोजेक्टां दा ऐलान कीता। इन्हां पिंडां विच एससी वर्ग दी आबादी 40% तो वध है। पंजाब सरकार वल्लों 450 सहायक सब इंस्पैक्टरां दी सिद्धी भर्ती नूं मंजूरी दे दित्ती गई है। खजाना मंत्रालय ने ऐलान किया है कि ग्राहकां दी सहूलत लई सारे जनतक खेतर दे बैंक अते खेतरी देहाती बैंक एतवार 27 सितंबर नूं खुले रहणगे। पीएयू कृषि विज्ञान केंद्र श्री मुक्तसर साहब वल्लों गिद्दड़बाहा च झोने दी पराली दे सुचज्जे प्रबंधन संबंधी ब्लाक पद्धरी जागरूकता कैंप लगाया गया। उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो आज ग्रेटर नोएडा विच इंडिया एक्सपो सेंटर विखे शुरू होया। भारतीय मर्दा अते औरतां दी कबड्डी टीमां एशियाई खेडां दे फाइनल विच पहुंच गईयां ने। सो एसीजी मुख खबरां। आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले 4:25 होए ने। हुण पेश है सूफियाना कलाम दा प्रोग्राम। अज तुसी इस प्रोग्राम च सतीश चंद्र दी आवाज च सूफियाना कलाम सुनोगे।

हुण सुनदे हां सतीश चंद्रा दी आवाज च सुफियाना कलाम, एक तख्त हजारे दी गल कीजे।

राज लीला तेरा नाम बनाई, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई। ये कथन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा उच्चारित है। पाव ए कि आत्मिक आनंदी अवस्था हे प्रभु जी आप जी दे नाम सदका ही प्राप्त हुई है, ते ए कीर्ति करन दा सबब भी आप जी दी मेहर सदका ही प्राप्त होया है। अकाल पुरख दे गुण बेअंत हन, उसदे चोज न्यारे हन, उसकी सिफत करन दा संजोग रब्बी रहमत ते ही निरपर है। सूही राग विचले फरमान विच पंचम गुरु जी बेनती वाले बचन करदे ने कि हे प्रभु ऐसा समा बना दिओ मेरे प्यारे जदों मेरी रसना आप जी का नाम उचारदी रहे। मेरी बेनती सरवण करो दीना उत्ते दया करन वाले स्वामी, जिमें सतपुरश सदा आप जी दे गुण गायन करके अमृत रस का आनंद माणदे ने। से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे। सरवण करदे हैं भाई गुरमेज सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया हुआ

से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द गायन की तसी पाई गुरमेज सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। निरसंदेह मनुखी मन आप हुदरा है, बेलगाम है। इसनू काबू करन वास्ते उद्दम ते रब्बी रजा रब्बी बख्शिश लोड़ींदी है। इस वास्ते मन नू सिद्धे पासे लाउणा जरूरी हो जांदा है। रब्बी गुणा दे गायन दी विधि नाल मन भी कृपा दा पात्र बन जांदा है। केदारा राग विचले शब्द विच साहिब श्री गुरु रामदास जी मन नू संबोधित होण दा निवेकला ढंग दर्शाउंदे ने कि ऐ मेरे मन, तू हर वेले नता प्रति सृष्टि विच रमे हुए राम दे नाम दा गुणगान कर। उस गमता तो परे अदृष्ट परमात्मा जो अपहुंच है, जिसका पारावार नहीं पाया जा सकता। फरमान है, मेरे मन राम नाम नित गाविये रे, अगम अगोचर न जाई हर लख्या, गुरपूरा मिले लखाविये रे। इस शब्द का गायन किया बीबी आशुप्रीत कौर ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: मेरे मन राम नाम नित गाविया रे। इस शब्द का गायन किया सी बीबी आशुप्रीत कौर ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आं इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलवंत सिंह।
1: यह पावन पवित्र शब्द सोढ़ी सुल्तान श्री गुरु रामदास जी की निर्मल रसना तो उच्चारण किया होया है, जो कि चवर छत्र तख्तां दे मालक शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1118 उपर सवायमान है। सतगुरां ने इस शब्द नूं केदारा राग अंदर पहले कार विच गाउण दी हदायत कीती है। शब्द दे आरंभ विच मूल मंत्र दा संखेप स्वरूप दर्ज कीता होया है, जिस द्वारा सतगुरु जी दर्शाउंदियां समझाउंदे हन कि एक परमात्मा नूं सच्चे सतगुरां दी कृपा अनुसार मिलिया जा सकता है। साहब बख्शिशां करदे ने, साहिब मेरा एको है भाई एको है। आओ शब्द दियां आरंभक पंक्तियां दा पाठ गायन करिए। मेरे मन राम नाम नित गाविए रे, अगम अगोचर ना जाई हर लखिया, गुरपूरा मिले लखाविए रे रहाओ। सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जी रहाओ वाले बंद विच बख्शां करदे हन। हे मेरे मन, उस रब्बी नूरी शक्ति दा नाम सदा सिमरना चाहिदा है, जिस दे सिमरन नाल आत्मा प्रबल हो के परमात्मा नाल एकमिक होण दे योग बन जाती है। आत्मा परात्मा एको करै, अंतर की दुविधा अंतर मरै। गुर प्रसादी पाया जाए, हर स्यों चित लागै फिर काल न खाए। जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लाविए रे। सब को भगत करे हर केरी, हर भावें सो थाए पाविए रे। इन्हां पंक्तियां विच चौथे गुरदेव नदर ए रहमत करदिया बख्शिश करदे हन। हे मेरे मन, मेरा मालक प्रभु जिस उपर आप कृपा करदा है, उस मनुख नूं परमात्मा अपने कदीमी सुभाव मुताबक अपने प्रेम अंदर जोड़ लैंदा है। जिस सदका मनुख दिन रात हर वेले अपने अंतर आत्मा प्रभु चरणा विच सुरत जोड़ी रखदा होया परमात्मा विच लवलीन रहिंदा है। सतगुरु जी फरमाउंदे हन, अहनस अंतर रह लिवलाए, सोई पुरख जे सच समाए। आओ अगले बंद दी विचार आप नाल करदे हाँ। हर हर नाम अमोलक हर पह हर देवै, ता नाम त्याविए रे। जिसनू नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छडाविए रे। धीरजवान निम्रता दे समुंदर सतगुरु जी सानू जीवन नूं समझाउंदे हन। हे मेरे मन, परमात्मा दा नाम किसी दुनियावी मुल नहीं मिलता, क्योंकि मुल रहत नाम परमात्मा दे अपने पास है। जदों परमात्मा किसी मनुख उपर अपनी कृपा करता है, तदों ये नाम दी दात मनुख नूं दिंदा है, तां ही सिमरिया जा सकता है। ऐसा रतन रूपी नाम सतगुरां दे कोल है, जे गुरां दी दसी मर्यादा अनुसार जीव रूपी इस्त्री उस मार्ग उपर चल पए तां वड्डे भागां वाले हन, शलाघायोग हन, जिहड़े आ के गुरां दी शरण पैंदे हन। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास सतगुर सेवै लगिया, कढ रतन देवै प्रगास। धन वडभागी वडभागिया जो आए मिले गुरपास, हर नाम आराधे से धन जन कहिए, तिन मस्तक भाग धुर लिख पाविए रे। तिन देखे मेरा मन बिकसै, ज्यों सुत मिल मात गल लाविए रे। सतगुरु जी निम्रता दे सागर रहमत दे घर विच्चों मेहरामतां करदे संसारक जीव रूपी इस्त्री नूं समझाउंदे हन।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे जियो। इस वईये दा गायन कीता सी बीबी गुरप्रीत कौर ते उन्हां दे साथियां ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियां और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कर्नाटक से मालदीव के लिए जीआई टैग वाली गुलबर्गा तुअर दाल की 1 मीट्रिक टन खेप को रवाना किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करना है। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य समेत 22 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज, टीआरएम 854 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.8 मेगा हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगा हर्ट्ज और डीटीएस दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी ते 6:05 हो रहे हैं। लो हुण पेश है अज दे प्रसारित होने वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

शाम 6:30 ते पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। अज इस काम दियां गल्लां नवें फलदार बूटियां दी देखभाल बारे जानकारी लवांगे डॉक्टर सवरीत खैरा होना कोलों। रात 7:45 ते उर्दू वार्ता प्रोग्राम सबरन च सुनांगे वार्ता विजय कुमार अबरोल होना कोलों। रात 8 समा रहेगा फिल्म संगीता। रात 8:10 ते पेश करांगे प्रोग्राम जन सेवा तो देश सेवा तक वोकल फॉर लोकल। इसका प्रसारण आकाशवाणी पटियाला ते आकाशवाणी बठिंडा तो नालों नाल कीता जाएगा। रात 8:40 ते पेश करांगे पंजाबी गीत। रात 9:30 ते पंजाबी वार्ता प्रोग्राम विचार चर्चा च पेश करांगे साहित्य नूं प्रफुल्लित करन च साहित्यक संस्थावां दी भूमिका। इस विच भाग लैणगे सतनाम सिंह मानक, जसपाल मानखेड़ा ते प्रोफेसर सुरजीत जच, ते जिस दे संचालक ने डॉक्टर आसा सिंह कुमन। रात 10:20 ते पेश करांगे हिंदी गीत। ते 10:30 ते समा रहेगा प्रोग्राम सरगम दा। एसन साडे अज दे प्रसारित करन होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समा। ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आ हुण सुणदे आं देशभक्ति समूह गान।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
0: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स ते FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स ते। इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

नमस्कार, ए आकाशवाणी ए। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्रीय कानून ते न्याय राजमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पंजाब विच वध रहे नशियां दे संकट नूं लैके चिंता जाहिर कीती। पंजाब दे राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब स्टेट रेड क्रॉस वल्लों हड़ प्रभावित नेपाल लई राहत समगरी की तीजी अते सब तो वड्डी खेप नूं हरी झंडी दे के रवाना कीता। पंजाब दे

मन की बात माननयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नू प्रसारित करनगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नू प्रसारित करनगे नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज

मेगाहर्ट्ज़, TFM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी बठिंडा, आकाशवाणी पटियाला, विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

0: हाँ जी पंच साहब कह लेते हैं
1: जी
0: कि समय के मुताबिक जिदा गल करते हैं कि हर चीज़ ने फैलना भी है ते वधना भी है।
1: बिल्कुल सही।
0: ते कीड़े मकौड़े ने भी अपना काम करना है।
1: करना है। मित्र कीड़े तो बहुत जरूरी ने साडे वास्ते।
0: हाँ जरूरी भी होंगे है। सो जिहड़े आपां हुण नवे बाग लगाने है उन्हां विच कई तरीके दीआं समस्यावां आ जांदीआं ने।
1: अच्छा
0: सो किस तरीके नाल जिहड़े आपां नवे बागां दी संभाल करिए तां कि देखो अगे चल के आपां नूं भरपूर पैदावार मिले जी फलां दी शक्ल दे विच। अपने को डॉक्टर सवरीत खैरा और आए सन जी।
1: अच्छा जी
0: ते जानकारी दे गए है।
1: ठीक है
0: लो सुनो फिर
1: सुननी चाहिए है।
2: सत श्री अकाल सारिआं नूं। अज असी गल करांगे नवे लगाए फलदार बूटियां दी सांभ संभाल करन दे ढंग तरीकियां बारे। जिवें कि तुसी सारे जानदे ही हो कि बाग एक लंबे समय दा किता है। सो इस तों लंबे समय तक मुनाफा कमाउण लई फलदार बूटियां दी सारी तकनीकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। वैसे तां फलदार बूटे हर उम्र विच देखभाल मंगदे हन पर शुरू विच नवे लगाए हुए फलदार बूटे कुछ ज़्यादा देखभाल पालदे हन क्योंकि ये बहुत ही नाजुक हुंदे हन ते इन्हां नूं ध्यान देण दी बहुत लोड़ हुंदी है। अजही स्थिति विच जे कोई अनगहली हो जावे जदों बूटे आपां लगाउने आ तां उस दा असर सिद्धा आउण वाले समें ते झाड़ ते अते बूटियां दी उमर ते पैंदा है। सो नवे लगाए बूटियां दी सिंचाई वाई खाद प्रबंध मौसम तो बचाउण लई पूरी योजनाबंदी होनी चाहीदी है। बूटे बाग विच लाउण तो बाद उन्हां नूं लगातार देखभाल दी लोड़ हुंदी है। सो सदाबहार फलदार बूटे जो कि बरसाती मौसम विच लगदे हन इन्हां नूं स्थापित करन लई बहुत ही सुचुजे ढंग नाल बाग दा प्रबंधन करना चाहीदा है। सारिआं तों पहलां आपां गल करांगे बूटियां दी सिंचाई बारे। सिंचाई बहुत ही जरूरी है क्योंकि नवें लगाए बूटियां दी पहली अते मुख लोड़ पानी दी हुंदी है। पानी दी घाट जां लोड़ तों वध पानी बूटियां दे विकास नूं रोक दिंदा है अते नवें लाए बूटियां नूं सही समें अते सही मात्रा विच पानी देना बहुत ही लाजमी है। सुचज्जी सिंचाई नाल बूटियां नूं सेहतमंद रख के आउण वाले समें विच फलां दा वधेरे झाड़ लिया जा सकदा है। सो इत्थे गल ये करांगे कि बेलोड़ी सिंचाई बूटियां नूं लाभ दी बजाए हानि देंदी है। सो सिंचाई हमेशा उन्नी ही करो जिहड़ी बूटियां दीआं जड़ां नूं गिल्ली करे अते इस जमीन दे विच नवी नूं बरकरार रखे। कई वार वध सिंचाई नाल पानी बाग विच खड़ा रहिंदा है अते इस नाल बूटियां ते बहुत ही माड़ा असर पैंदा है। इस हालत विच फलदार बूटे बीमारियां दीआं निशानियां भी जल्दी दिखाउण लग पैंदे हन अते कई वार पत्ते पीले हो के किर जांदे हन ते हौली हौली बूटा मरण दी अवस्था विच भी चले जांदा है। सो अगे सिंचाई तो बाद आपां गल करांगे बूटियां दे निरीखण दा अते बाग दी वाही दा। बागबान नूं चाहीदा है कि बूटे लाउण तो बाद बाग नूं समें सिर उस दा निरीखण करदा रहे तां जो ये चीज़ां दा ध्यान रख्या जावे कि जड़ मुढ़ तो कोई फुटारा ना निकलिया होवे। जे अजिहा कोई फुटारा सामने आउंदा है तो उसनूं बड़ी ही सावधानी नाल कट दित्ता जावे। नाल ही नवें लगाए बूटियां नूं सोटी दा सहारा दित्ता जावे तां जो एक पासे नूं उलरन नाल इन्हां दा ढांचा सिद्धा बनिया रहे। सो बूटे नूं एक सख्त जान सोटी दा सहारा दे के रस्सी नाल बन्निया जावे। सुक चुके जां मर चुके बूटियां नूं बाग दे विचों उन्हां दी लगातार पूर्ति करदे रहो अते ये भी ध्यान रखो कि नदीना दी रोकथाम सही ढंग नाल होवे। कई बार इस तरह होंदा है कि नवें लगाए बूटियां दे नाल नाल नदीन अजे इस ढंग नाल उग जांदे है कि बूटा पूरा ढक

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नू प्रसारित करनगे नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं फरतनाज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहतनाज। आज का भारत युवा भारत है। हमारे देश की 65% आबादी

0: 35 साल से कम उम्र की है और ये युवा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, सपने पूरे करने वाला है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मैदानों की जहां भारत दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। एक है खेल का मैदान और दूसरा है अंतरिक्ष का मैदान। जी हां, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, इसरो के पूर्व निदेशक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपने को सच होते हुए देखा है, डॉक्टर प्रमोद काले जी। नमस्कार प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार।
0: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं खेल जगत के जाने माने विश्लेषक श्री जी राजारमन जी। नमस्कार राजारमन जी।
2: शुक्रिया फरहाद।
0: तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रमोद जी से सबसे पहला सवाल करते हैं। सर, आपने इसरो को साइकिल पर रॉकेट ले जाने के दौर से देखा है, आज हम चंद्रयान के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, और मंगलयान हमने पहली ही कोशिश में बहुत कम बजट में कर दिखाया। ये यात्रा युवाओं को क्या सिखाती है?
1: जो भी कुछ सपने होते हैं वो सच होने के लिए बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं, और तरक्की जब हमारे देश ने जो की है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है
0: जी।
1: एक तो जब हमने शुरुआत की हमारी सब टीम भी बहुत ही छोटी थी, पैसे भी कम थे, लेकिन सपने बड़े थे और आगे जाके क्या करना है इसका हमें पूरी तरह से ख्याल था
0: जी। सर,
1: चंद्रयान 3 जब चंद्र पर जाके उतरा अच्छी तरह से, उसमें से एक रोवर भी निकला, प्रज्ञान रोवर भी निकला, तब मैं तो सिर्फ टेलीविजन पे देख रहा था यहाँ घर बैठे, और तब मैं सोचता था कि इतने सालों में जो काम किया उसकी सफलता देखने को मिली है।
0: तो अब हम आगे बढ़ते हैं और राजारमन जी आपके पास चलते हैं, खेल की बात करते हैं। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज कहा जा रहा है जो खेलेगा वही खिलेगा। तो ये बदलाव कैसे आया?
2: खेलोगे तो बनोगे लाजवाब, ये भी बोलने लग गए। अच्छी बात है कि 2014 के बाद एक सोच में बदलाव आया है, युवाओं में एक भरोसा आ गया है कि अगर हम खेलते हैं तो हमारा निजी जीवन बहुत बढ़िया चल सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट टॉप एथलीट्स के लिए बहुत है और युवाओं में एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा हो गया है। पहले नहीं था, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ये समझ आ गया कि देश उनका बहुत इज्जत करता है, देश के नेता उनको बहुत इज्जत करते हैं, और इतना सम्मान और प्यार शायद खिलाड़ी को पहले कभी नहीं मिला।
0: सर, ये बताइए आप कि सरकार खेलो इंडिया, मेरा युवा भारत, खेल महाकुंभ, फिट इंडिया और नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसी कई योजनाएं लेकर आई है, और इनसे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या गाँव बच्चों को भी अब ओलंपिक का सपना देखने का मौका मिल रहा है?
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में, ये कहा कि 5 से 15 साल के बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और फिर 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए हम तैयारी करेंगे, अब से शुरू करेंगे। ये सोच बहुत अच्छी सोच है, पहले भी होता था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अभी एक साइंटिफिक तरीके से होने लगा है, और युवाओं को ये समझ आया है कि खेलने से इंसान की सेहत बनती है और शायद भविष्य भी बन जाती है।
0: बिल्कुल। और अब हम प्रमोद जी के पास वापस लौटते हैं और चांद की बात कर लेते हैं कि आज हम चांद से आगे निकल गए हैं, आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहा है और 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो इस भविष्य को आप कैसे देखते हैं?
1: बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। आदित्य जो है वह पृथ्वी से बहुत ही दूर है, लेकिन सूरज की जो स्टडी करनी है तो उसके लिए वहां जाकर ही करनी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे तक हम सूरज को देख सकते हैं। अभी अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको जो हम भेज सकेंगे अगले साल के अंतरिक्ष में, तो वो बता सकेगा, वो प्रयत्न जो होगा वो हमें बता सकेगा कि ये भारत का जो स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है वो अच्छी तरह से चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले हमें अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट को अपने ही यान से अंतरिक्ष में भेजना है, और वो अगर कर सकेंगे तो हम उसके आगे जाकर बहुत ही काम करना है। अभी चंद्रयान 4 का भी काम चल रहा है, और भी एक लैंडर जो है जापानीज एजेंसी के साथ उनका जो काम चल रहा है उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो युवा जो है उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि पहले तो क्या सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी जो मैं सोच रहा था कि स्पोर्ट्स की जो बात आ गई, तो स्पोर्ट्स और उसका जो संबंध जो है वो मुझे तो पहले तरह से ही पता है, क्योंकि जब नासा ने पहला उनका सैटेलाइट सिनकॉम 3 1963 में भेजा था, उसका उपयोग 1964 साल के टोक्यो ओलंपिक्स वो अमेरिका में लाइव देख सके
0: जी।
1: और उसके बाद जो प्रगति हुई, जो हमने देखा कि 1982 में INSAT-1 का हमने प्रक्षेपण किया था वो असफल रहा, लेकिन दूरदर्शन ने रशियन सैटेलाइट स्टेशनर का उपयोग कर

0: करके पूरे एशियाड गेम्स सब जगह पे दिखा सके, और एशियन गेम्स जापान में चल रहे वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं, ये कैसे होता है? तो इसके लिए जो दूरदर्शन के जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ऑल इंडिया रेडियो के ट्रांसमिशन सिस्टम है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग आज हमारे उपग्रह है, जो उपग्रह का उपयोग करके हम ये सब काम कर सकते हैं।
1: जी, तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, जब एक अंतरिक्ष का जो शख्स है वो खेल की बात करता है तो मुझे लगता है कि अपने आप में इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि खेल में भी एक सेकंड की चूक मेडल छीन लेती है और अंतरिक्ष में ठीक वैसी एक सेकंड की चूक मिशन फेल कर देती है। तो दोनों में मुझे लगता है अनुशासन और फोकस बहुत जरूरी है। तो राजा रमन जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कैसा अनुशासन चाहिए?
2: बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है और ग्लोबल सुपर पावर बनना है स्पोर्ट में, जैसे अब मुझे लगता है डॉक्टर कले और ऐसे लीडर्स हमारे स्पेस प्रोग्राम को बहुत आगे ले चुके हैं। वहाँ आप देखिए, एक बार हम शायद 500 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले। ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता था कि नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा, गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल, एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल आया था। एक महिला हमारी एक ही ओलंपिक गेम में दो मेडल हासिल कर सकती है, मनु बाकर की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन अब संभव हो गया है सब कुछ। अब हमारी सोच शायद छोटी थी, अब सोच को विस्तार करने का एक मौका मिला है, और फिर उस सोच को आगे चल के प्लान में और एक्शन में बदलने का एक मौका मिला है भारत को, और हमारी युवा पीढ़ी शायद वो अनुशासन दिखाने लगी है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो या शूटिंग हो या कुश्ती हो या मुक्केबाजी हो या फिर तीरंदाजी हो, ऐसे खेलों में हम बहुत ज्यादा अनुशासन दिखा रहे हैं, खास करके हमारे टॉप एथलीट।
1: राजरमन जी, पहले दिव्यांग बच्चों की जब बात आती थी तो अक्सर लोग निराश हो जाते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में दिव्यांग बच्चे ही खेलों में आगे बढ़ रहे हैं।
2: वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दीपा मलिक की बात कीजिए, पहली ऐसी महिला बनी भारत से जो पैरालंपिक गेम्स में मेडल हासिल की है, और कई ऐसे एथलीट हैं, शीतल देवी की जितनी तारीफ की जाए कम, उनके हाथ नहीं है लेकिन पैर से तीर चलाती है और फिर विश्व में बहुत ही विख्यात पाई है, शी इज वेरी फेमस एथलीट। ऐसे बहुत सारे एथलीट है जो बाकियों का हौसला अफजाई करते हैं। पहले होता था जब हम विकलांग को देखते थे तो तरस का एक सोच आता था, अब तरस नहीं समझ की बात होने लगी है, ये बदलाव अभी देखने को मिला है पिछले 10-12 साल में, और हमारे खिलाड़ी विकलांग खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट जो खेलते हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और फिर बाकियों को भी प्रोत्साहित करते हैं।
1: बिल्कुल राजा रमन जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम गगनयान मिशन पर हमारी एक खास रिपोर्ट सुन लेते हैं।
3: श्रोताओं, आज का युवा सिर्फ खेल के मैदान में ही देश का नाम रोशन नहीं कर रहा है, बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे भारत के गगनयान मिशन की। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और लगभग 3 दिन के मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन श्रोताओं, इंसान को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम नहीं है। इसके लिए रॉकेट, अंतरिक्ष यान, जीवन रक्षक प्रणाली, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था जैसी कई तकनीकों का विकास करना पड़ता है। भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट HLV-M3 के सभी प्रोपल्शन स्टेजेस और स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी से जुड़ी डिक्लेरेशन सिस्टम की जांच के लिए 2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब गगनयान कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। गगनयान का पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है। इस मिशन में व्योमित्रा यानी एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य उन तकनीकों की जांच करना है जिनकी आवश्यकता भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए होगी। इसके बाद 2 और अनक्रूड मिशन की योजना है और मानव मिशन को 2027 के लिए लक्षित किया गया है। श्रोताओं, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये देश में कई नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों का रास्ता भी खोलता है। अंतरिक्ष यान बनाने से लेकर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, संचार और दूसरे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है, और यही वजह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका एक उदाहरण युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है। 2026 में युविका कार्यक्रम में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 456 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों को इसरो के 9 केंद्रों पर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की जानकारी दी।

गई। उन्हें वैज्ञानिकों और गगन यात्री से बातचीत, रॉकेट लॉन्च देखने, रोबोटिक्स, चंद्रयान 3 DIY किट और मॉडल रॉकेट जैसे व्यावहारिक अनुभव भी दिए गए। श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल चंद्रमा या मंगल तक सीमित नहीं है। देश भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत की योजना लगभग 2035 तक 5 मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज करने की है। इसके पहले मॉड्यूल BAS-1 को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आज का युवा जिस विज्ञान को किताबों में पढ़ रहा है, आने वाले समय में उसी विज्ञान का इस्तेमाल अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल करने में कर सकता है। खेल के

0: मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज करने की है। इसके पहले मॉड्यूल BAS-1 को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आज का युवा जिस विज्ञान को किताबों में पढ़ रहा है, आने वाले समय में उसी विज्ञान का इस्तेमाल अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल करने में कर सकता है। खेल के मैदान में युवा अनुशासन, मेहनत और टीम भावना से देश को गौरवान्वित करता है। वहीं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवा अपनी जिज्ञासा, ज्ञान और तकनीकी क्षमता से देश के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर केवल एक विचार नहीं, बल्कि युवाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ने की दिशा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में आज के युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और विद्यार्थी आने वाले भारत की नई कहानी लिख सकते हैं।
1: तो अब हम वापस लौटते हैं प्रमोद जी के पास। और प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार मिशन फेल हुए, जैसे चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग, तो उस रात इसरो में क्या माहौल था और फेल होना भी युवाओं के लिए क्या सबक है?
2: एक तो जब हम हाथ में काम लेते हैं तो पहले से पता होता है कि कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका अभ्यास करके इसमें क्या सुझाव करना पड़ेगा, तो यही सोच रख के हम काम करते हैं कि कुछ भी जो फेल हो जाए तो ठीक है, हम आगे जाके इसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जब मिशन होता है, इतनी बड़ी टीम जब काम करती है, कभी कुछ गलत हो सकता है, और जो गलत हो जाए तो आगे जाके उसको ठीक करके हम फिर से दोबारा ऐसा ही प्रयत्न करेंगे। ये भावना मन में रख के ही हम आगे काम करते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो मैंने देखा है कि टीम स्पिरिट जो होना चाहिए, वही टीम स्पिरिट ये स्पेस के हमारे काम में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: प्रमोद जी, आप ये बताइएगा कि भारत का स्पेस प्रोग्राम मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ा, लेकिन अब स्टार्टअप्स की बात की जाए या फिर प्राइवेट कंपनियों की, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो इस बदलाव के सबसे बड़े अवसर और चुनौतियां क्या हैं?
2: पहले से ही हम देख रहे थे कि जब हमने काम हाथ में लिया था तो सभी जो काम है वो पूरा काम इसरो में ही हो सकता नहीं। जब इसरो ने काम चालू किया SLV-3 लॉन्च व्हीकल के लिए, तब ध्यान में आया था कि इसके लिए जो काम है उसको इंडस्ट्री में ही करना चाहिए, जो बड़ा काम करना है वो। और तभी से 40 साल हो गए, अभी सभी इंडस्ट्रीज हमें उसके साथ मदद करती है। आज जो देखे तो मुझे लगता है कि 75% काम जो है वो अपने यहाँ की इंडस्ट्री में हो रहा है, और अगर जो ये इंडस्ट्री आगे जाकर ये काम खुद अपने ही हाथ से करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो काम करना है तो वो इसरो कर सकती है, और लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है वो जो हमारे अभी के जो छोटे जो लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नहीं तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो इंडस्ट्री में जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये स्टार्टअप ने हमें दिखा दिया है, स्काई रूट का जो Vikram-1 जो उन्होंने लॉन्च किया
1: जी,
2: बहुत ही अच्छी तरह से काम हुआ है, और ये काम और आगे जाकर वो कर सके पूरी तरह से। उसके लिए जो ईंधन लगा था वो इसरो में ही बना था, तो जो काम इंडस्ट्री कर सके इसरो के बाहर वो जो अपने हाथ में ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस काम में नए इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
1: और अब राजा रमन जी, आपके पास वापस लौटते हैं, हम बात करते हैं फिट इंडिया की। तो फिट इंडिया सिर्फ एक नारा है या लोगों की आदत वाकई में इससे बदली है?
3: इससे पहले मैं डॉक्टर काले ने जो बात कही है हारने की और जीतने की, वहां से सीख लेने की, ये आपको खेल के मैदान में देखने को मिलता है फरज जी, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप ज्यादा हारते हैं और हार से जो सीख मिलता है वो शायद जीत में नहीं मिलता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग खेलें और सीख लें कि आज हार भी जाए तो अपने आप को कैसे उठाएं, और इसरो ने वो कर दिखाया।
1: हाँ, और पुरानी कहावत भी है, हार में ही जीत है।
3: बिल्कुल है। और अगर हम फिट इंडिया की अभी बात करते हैं, तो फिट इंडिया एक सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया, अभी लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम है लोगों को समझाने का कि अपना सेहत बना के रखो, और सेहत बनाने का एक तरीका है खेल, और आधा घंटा अगर आप खेलते रहेंगे दिन में तो आपकी सेहत बन सकती है। एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है भारत के सामने, जहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे शायद हमको सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने सोचा है कि फिट इंडिया एक ऐसा मुहिम बनाते हैं, लोगों को समझ आएगा और लोग अपने आप ही और अपने सेहत बेटर करने की ओर चल पड़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्लोगन नहीं हमको मिशन मानना चाहिए।
1: जी अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, जैसे उत्तर पूर्व हो गया या हरियाणा, ये छोटे राज्य हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेडल यहीं से आते हैं, तो इसका क्या राज?
3: के वहाँ के लोगों के अंदर एक शायद भूख है, जो छोटे शहरों में, सिर्फ इन प्रांतों की नहीं बात करता, आप पूरे देश में देखिए, जो छोटे शहर से

0: आते हैं या गांव से जो आते हैं खिलाड़ी, उनके अंदर एक भूख होता है, कुछ कर दिखाने का मादा होता है और वो कर दिखाते हैं। शायद थोड़ा अगर एजुकेशन लेवल बेहतर हो जाता तो खिलाड़ी और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि जो खिलाड़ी आए हैं और जो भारत का नाम रोशन किए हैं, उन सब में एक ही बात है कि उनके अंदर एक भूख है। हुनर तो है ही, हुनर चाहिए, उसके साथ कोशिश भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके अंदर भूख है कि वो कुछ करना चाहते हैं और फिर अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने गांव को सुधारना चाहते हैं।
1: जी अच्छा प्रमोद जी, मैंने कुछ समय पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि चेन्नई के दो युवाओं ने, अग्निकुल और हैदराबाद के युवाओं ने स्काई रूट बनाया, तो इसरो इसमें कैसे उनकी मदद कर रहा है?
2: उसकी टेस्टिंग के लिए और उसका जो ईंधन जो है वो ईंधन इसरो ने दिया था, प्रोपेलेंट जिसे कहते हैं वो
1: जी।
2: और जब उसको लॉन्च किया विक्रम 1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया था। जो भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है और जो काम वो कर रहे हैं उसे और भी ज्यादा तरीके से, सिर्फ एक जगह पर नहीं लेकिन भारत में 3-4 जगह से इस तरीके से काम होने की जरूरत है।
1: तो अगर हम आज से 20 साल आगे भारत के स्पेस प्रोग्राम की कल्पना करें तो आप भारत को कहां देखना चाहेंगे?
2: चंद्रमा पे जाकर वहां से अच्छी तरह से वापस आना, ये महत्वपूर्ण बात होगी।
1: वापस आना और वापस आकर मुझे लगता है खेल जगत की दुनिया में दोबारा चलना। राजरमन जी,
0: 20 साल की अगर बात करें तो अगर हम ओलंपिक के टॉप 10 देशों में हो जाए तो मेरे लिए बहुत सुनहरा सपना साकार हो जाएगा। अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा खेल की ओर बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग बढ़ते हैं और जो शिक्षक है वो और थोड़ा मेहनत करते हैं, सिर्फ 10-12 खिलाड़ी में नहीं फोकस करके 400-500 खिलाड़ी में फोकस करें, उनमें से चैंपियन पैदा करें शिक्षक जो कोचेस है, अगर वो हो जाता है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी थोड़ा सा सोच में हमारा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन चाहे लिएंडर पेस हो या अभिनव बिंद्रा हो या राज्यवर्धन राठौर हो या मनु बाकर हो या नीरज चोपड़ा हो, इन लोगों ने उस सोच में बदलाव लाने का बहुत बहुत योगदान दिया है।
1: तो राजरमन जी, 2036 की अगर बात की जाए, हम आगे ओलंपिक भारत में लाने की बात हो रही है, तो अगर ओलंपिक भारत में हुआ तो इससे युवा शक्ति को क्या फायदा हो?
0: एक बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और कईयों को नौकरी लग सकती है। हम समझते हैं कि खेल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन आप देखिए एक पूरा इंडस्ट्री बनता है खेल के इर्द गिर्द, चाहे वो टूरिज्म हो या लेबर फोर्स हो, जो स्टेडियम बनाने का लेबर फोर्स हो, कई सारे लोग जुड़ जाते हैं इसमें और युवाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। खिलाड़ी के लिए तो है ही, लेकिन और भी युवा जुड़ सकते हैं खेल के माध्यम से और उनका भला हो जाएगा।
1: और अब वापस लौटते हैं और अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चों का भविष्य है अंतरिक्ष में आगे के लिए, प्रमोद जी क्या होना चाहिए?
2: जहाँ भी वो सीखते हैं ये बच्चे, उनको पहले से ही थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले कि छोटा रॉकेट किस तरीके से बना सकते हैं, छोटा सैटेलाइट किस तरीके से बना सकते हैं और उसमें जो टीम जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है। मैंने यहाँ पुणे में देखा था, एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कोई स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूरा प्रयत्न करके एक उपग्रह बनाया जिसका नाम था स्वयं। और रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ आया पुणे में तो मैंने उनको मदद की थी और मैंने देखा कि उनके अंदर जो ऊर्जा थी ये काम वो कर दिखा सकते हैं। वो टीम जो पहले थी वो अंत तक नहीं रही थी क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स है, उनके 3-4 साल पूरे हो जाने के बाद वो कॉलेज छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मगर ये कॉलेज ने करके दिखाया था। और इस तरीके से का काम जो है जिसमें लगातार काम करने की जरूरत है, ये ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बड़े दूसरे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने पहले से इस तरीके के काम के लिए उनके जो विद्यार्थी है उनको तैयार करना चाहिए।
1: प्रमोद जी, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, इस किसी चीज की कमी नहीं है, इंटरनेट है और बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर हम मदद ले सकते हैं, लेकिन जब भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सफर शुरू हुआ था तब सीमित संसाधनों से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर पीछे मुड़कर देखें तो वो कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिन्होंने भारत को एक शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम से आज एक सक्षम अंतरिक्ष शक्ति बनने तक पहुंचाया?
2: एक तो पहले हम जब काम करते थे तो पहले 3-4 साल तक जो रॉकेट्स

0: हैं जो सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों को आगे आने का मौका देती हैं, तो ऐसे में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है आपने। हाल ही में मेरी बात हो रही थी कुछ शूटर्स के साथ जो निशानेबाज है, राइफल शूटर्स, उनको एक बॉडी आर्मर सूट पहनना होता है। वो सूट पहले आप इम्पोर्ट करते थे, अभी भारत में जो बनता है वही दुनिया भर में चलता है। तो भारत में काम शुरू हो गया है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है या आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खेल में भी आ गया ये। और ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी भी आपको अभी समझ में आया कि विदेश में ही नहीं ट्रेन करते हैं, हमारे पास पटियाला में हो या बेंगलोर में हो या त्रिवेंद्रम में हो, वहां पे भी ट्रेनिंग करके आप विश्व में चैंपियन बन सकते हैं। और ये दिखाया है कि आपके पास अभी सारे संसाधन है, आपकी तैयारी अगर सही हो तो आप विश्व में जाके एकदम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ।
0: तो एक महिला होने के नाते मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की भूमिका या फिर महिलाओं के लिए क्या चीजें की जा रही हैं स्पोर्ट्स के लिए?
1: 1970 में कमलजीत संधू पहली ऐसी महिला बनी जो एशियन गेम का गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए। और आज बहुत माहौल बदल गया है और हमें ये समझ आया है, पूरे हिंदुस्तान को समझ आया है कि हमारे महिला शक्ति बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत सारे पदक हासिल करते हैं, एशियन गेम में हो या राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, यहाँ पे हमारे महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो एक कोशिश ये है, अगर आप खेलो इंडिया की बात करें उसके अंदर अस्मिता लीग करके एक शुरू हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए। ये हमारे समझ में आया है कि महिला हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम बना है अस्मिता, वहां से खेलो इंडिया में चलते हैं, खेलो इंडिया से फिर टॉप्स में आते हैं। बहुत सारे अभी रास्ते खुले हैं हमारे महिलाओं के लिए और एक इज्जत मिलने लगा है सोसाइटी में जब वो खेलते हैं और फिर भारत का नाम रोशन करते हैं। दे आर रेस्पेक्टेड अ लॉट मोर, पहले जैसा नहीं, लेकिन अच्छी बातें हो रही है भारत के अंदर और मुझे लगता है कि महिला ही हमें बहुत आगे और लेके जाएंगे।
0: अगर खेल की हम बात करते हैं तो उसमें डोपिंग और एज फ्रॉड जैसे मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं, तो युवाओं का जो करियर पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इस चीज को कैसे रोका जाए?
1: डोपिंग के लिए कानून बना है और जब एथलीट डोप करता है या करती है तो एक 4 साल का बैन लग जाता है उनपे, लेकिन जो उन्हें कराते हैं उनको क्रिमिनलाइज करके अभी भारत सरकार एक कानून बनाई है, अगर कोई खिलाड़ी को जबरदस्ती डोपिंग की ओर लेके जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है। और ये अच्छी बात है, डोपिंग रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका है ये है कि सप्लाई चेन को आप काट दें, तो ये डोपिंग के मामले में वो सही हो गया है। एज फ्रॉड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में है, अगर स्पोर्ट करप्शन की बात करें शायद डोपिंग से ज्यादा एज फ्रॉड है और इसमें चाहिए जो पेरेंट्स है, जो स्कूल के अध्यापक है, जो कोचेस है, इनको चाहिए अनुशासित होना और फिर सोचना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो एज फ्रॉड नहीं करना है। अगर सही एज में खेलेंगे तो हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में भी अच्छा करने लगेंगे, अब सिर्फ जूनियर में करते हैं हम।
0: राजा रमन जी, आपने अनुशासन की बात की तो प्रमोद जी से हम पूछना चाहेंगे कि किसी भी चीज के लिए चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर खेल, अनुशासन बेहद जरूरी है। तो अगर बात की जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई की या फिर डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम की, तो उनसे कौन सी ऐसी बात सीखने को मिली है कि जो आज के युवाओं को जानना होगा?
2: एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे टीचर थे, उनसे मैंने एक देखा था कि जब सुबह उठते हैं एक काम करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, कभी तीसरा, मगर पूरा दिन अच्छी तरह से काम करते रहते, उनका सब्जेक्ट कर रहे थे। जब हमारे साथ में काम करने के लिए आगे 1963 में, तो उसके बाद मैंने देखा था पहले ही जब हमारी मुलाकात हुई, बाकी सब इंजीनियर्स और 7-8 लोग हम थे, एपीजे अब्दुल कलाम वाज़ द ओनली एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। उनसे हमें बहुत सीखने को मिला कि उनका विषय था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हमारा विषय था कम्युनिकेशन, जो भी कुछ हम करते थे उसी में रस लेते थे, हमारे साथ चर्चा करते थे। और आगे जाकर हम जब SLV का काम करना चालू कर दिया तो तब तक मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से काम करते हैं, वो पहले से ही काम करते थे, पूरा रस लेके काम करते थे, पूरी जो उन्होंने टीम बनाई थी वो टीम के साथ वो किस तरीके से काम करते थे और कितनी शांतता पूर्वक, कितनी सभ्यता पूर्वक वो जो काम करते थे वो सीखने को मिला। तो जब आज मैं सोचता हूँ कि हमारे जो नए इंजीनियर से नए साइंटिस्ट है, इंडस्ट्री में काम करते हो या इसरो में काम करते हो, तो सबको एक ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो काम है ये पूरे टीम का काम है, कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये। और इसीलिए जो टीम स्पिरिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर देते हैं
0: जी। टीम स्पिरिट मुझे लगता है बहुत जरूरी है राजारमन जी हर चीज के लिए।
1: बिल्कुल है, और खेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, चाहे आप क्रिकेट टीम की बात करें या फिर हॉकी टीम की बात करें, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी फरज जी आजकल टीम आ गया है। एक खिलाड़ी के साथ कोच है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका भी एक टीम बन गया है। युवाओं को भी समझ आया है कि वो भी अपना एक टीम बनाए, चाहे आप धावक हो, स्प्रिंटर हो, या मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, या फिर आप मुक्केबाज हो, आप सबको चाहिए टीम। और खेल दिखाता है जब आप मिलके करते हैं तो मुट्ठी बन जाते हैं और फिर ताकत अपने पास आती है, और खेल बहुत सारी सीख देती है सबको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमीन से जुड़े रहते हैं, आप जितना भी आप अच्छा कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और भारत रत्न भी हैं, उन्होंने सिखाया कि आप कितने भी बेहतर हो जाए, और बेहतरी हो सकती है, कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव, हर रोज आप बेहतर हो सकते हैं। ये उनके रिटायरमेंट तक वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश में लगे रहे, परफेक्शन इज यूटोपियन, और वो दिखाएं कि हर रोज मेहनत करने से आप थोड़ा और बेहतर हो सकते हैं।
0: और अगर बात अब 2047 की करते हैं तो हम आप दोनों मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि 2047 विकसित भारत के लिए आप लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए। जी प्रमोद जी, सबसे पहले आप बताइए।
2: कि जब मैंने पहले पढ़ा था, गांधी जी ने जो लिखा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और जो उन्होंने विलेज स्वराज के लिए जो बात की थी, वो सीखने के बाद मुझे ध्यान में आया है कि अगर जो हमें आगे जाकर कुछ करना होगा तो ये एक अच्छी तरह से हमारा जो देश है उसको आगे ले जाने के लिए हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकेशनल सिस्टम इतनी अच्छी तरह से बने कि सभी को पूरा ज्ञान मिल सके।
0: जी राजारमन जी,
1: कई साल तक हम बिजली पहुंचाते रहे, पानी पहुंचाते रहे गांव में, अब वो समय आ गया कि अगर गांव में बच्चों को खेलने का सुविधा मिल जाए तो देश का बढ़ावा हो जाएगा। और शायद विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना ये होगा कि हर बच्चा खेलने लगेगा और फिर हम अच्छे स्टार्स बनेंगे।
0: तो हमने जैसे जाना कि खेलो इंडिया का जो युवा पोडियम है, जब तिरंगा फहराता है वहां पर, और इसरो का युवा रॉकेट लॉन्च करता है, तो दोनों ही एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं, और वो है युवा शक्ति से विकसित भारत। तो प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति के बारे में?
2: ये युवा शक्ति जो है उसको जानना जरूरी है, वो क्या कर सकते है, वो जो हमें ध्यान में आ जाए तो उनसे प्रेरणा लेकर हमारा काम और भी कर सकते हैं। उनको कहाँ जाना है इसकी थोड़ी तो उनको जो कल्पना हो, और वो कल्पना हो तो उसके लिए पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। ये पूरा सपोर्ट अगर जो उनको मिल जाए उनके टीचर्स के साथ, उनके फैमिलीज के साथ से, तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आगे जाकर जो भी कुछ स्पेस में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो पहले से ही उनको अच्छी तरह का गाइडेंस मिलना चाहिए। ये जो युवा शक्ति है उन्हें भी एक देखना है कि उनके रोल मॉडल्स क्या है और वो आगे जाकर क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो उनको कल्पना होनी चाहिए। ये जो प्रेरणा हो तो उनको बढ़ावा देकर उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से हो सकता है।
0: प्रमोद जी, देखा जाए तो आजकल के युवा हैं उसमें डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज हार गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मतलब बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अनुभव से उनको क्या सीख देना चाहेंगे?
2: हमने जब इनसेट वन लॉन्च किया था तो लॉन्च करने के बाद एक थोड़े ही दिन में ध्यान में आ गया कि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने इनसेट वन बी का भी जो काम था उसमें भी अच्छी तरह से ध्यान देकर काम किया। इतनी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भी फेल्यूर्स हो जाते हैं और आगे जाकर हमें फिर से उठकर आगे दौड़ना है, यही मैं तो देखता हूँ। आपने डिप्रेशन की जो बात की, ये डिप्रेशन ज्यादा होता है आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर समय जो मोबाइल देखते रहते हैं, बाकी के लोग क्या करते हैं वो देखते रहते हैं, और उनको ध्यान में आता है कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाते, दूसरे को ही कर पाते। तो ये जो डिप्रेशन की जो बात है ये एजुकेशन में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, हमारे काम में भी है, तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा सा तो उन्हें सेल्फ स्टडी का जो है वो करना चाहिए कि किस तरीके से ये अभ्यास करके अपने खुद को अच्छी तरह से आगे जाकर क्या कर सकते हैं, वो उनके ध्यान में आ जाएगा।
0: जी राजारमन जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
1: अगर डिप्रेशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगता है कि ये आप किसी से बात कर लें, किसी से मदद मांगना कमजोरी का निशाना नहीं होता है। बहुत सही टाइम पे आप अगर मदद मांग लेते हैं तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। और एक और तरीका दूर करने का डिप्रेशन को, खेलना होता है। जब आप सुबह में आधा घंटा या शाम को आधा घंटा खेल लेते हैं तो आपके मन को एक शांति मिलती है, सेहत बनती है, फिर आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जिनका उम्र हो गया वो टहल सकते हैं, लेकिन युवाओं को खास करके कहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ना जरूर, लेकिन साथ साथ खेलना भी, और दोनों को आप बैलेंस करेंगे तो लाइफ आपका सेटल हो जाएगा और डिप्रेशन नाम की चीज बहुत दूर रहेगी।
0: जी राजन जी, भारत सरकार ने खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी करी है, तो प्रतिभा की पहचान से लेकर अगर को किस तरह की पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है?
1: बहुत जरूरी है। पहले

0: मुझे याद है फरज जी,
1: जी
0: मैं बहुत ही युवा था तब तब एक हेडलाइन आया था कि हमारे 700 मिलियन लोग हैं और एक भी पदक नहीं। 1976 ओलंपिक गेम्स में से हम खाली हाथ लौट के आए थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, आबादी बढ़ी है, लेकिन सवाल बदला है। सवाल पूछते हैं कि कम मेडल क्यों आते हैं। कम मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक मुहिम बना है, चाहे वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का हो। पिछले साल खेल मंत्रालय ने कुछ 2 लाख बच्चों के असेसमेंट्स किए हैं, हो सकता है वहां से कुछ निकल के आए। एक साइंटिफिक तरीके से जीन पूल को लेके टेस्टिंग हो रहा है, एक खोज में लगे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो देन वी फाइंड द खेल है जहां हम बहुत ही बेहतर तरीके से खेलते हैं। क्रिकेट अभी ओलंपिक में आया है, शतरंज में हम शानदार हमारे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे खेल हैं, लेकिन ओलंपिक खेल की हमेशा बात होती है। वहां पे एथलेटिक्स में अभी हम वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, और खास करके शूटिंग हो या रेसलिंग हो या बॉक्सिंग हो, वेटलिफ्टिंग हो, वहां से तो हमें अच्छे अंजाम आए हैं। लेकिन तैराक अगर कुछ मेडल लाते हैं या जिम्नास्टिक से कुछ मेडल आ जाते हैं तो भारत का भला हो सकता है। इसी का खोज शायद वो 5 से 15 की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो अगर सच हो जाता है, उसको हम सही तरीके से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो then we will find the solutions to all our problems.
1: बिल्कुल, जो खेलेगा वही खिलेगा। मुझे लगता है अब ये बात बिल्कुल साकार हो गई है। और श्रोताओं, अंत में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि युवा शक्ति के लिए उनका क्या संदेश है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े।
2: मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ किसी का सुन के आगे नहीं जाओ, अपना खुद का सेल्फ स्टडी का एक रेजिम बनाए, और इस तरीके से जो भी कुछ उनके मन में हो, जो भी कुछ विषय उनको सीखना हो, तो आगे जाकर उनके आगे के करियर में भी काम आएगा। जब वो सीखते हैं कुछ भी, तो उनकी शिक्षा जो है वो कॉलेज पूरा हो जाने के वहां से खत्म नहीं होती। उनको लाइफ लॉन्ग स्टडी करने की जरूरत है, सीखते रहना चाहिए, और खुद को अच्छी तरह से वो आगे जाकर कुछ भी जो करना है उसके लिए एक सेल्फ स्टडी करने का जो है वो एक रेजिम बनाना चाहिए।
1: राजनमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की युवा शक्ति के लिए खेल क्षेत्र किस तरह रोजगार और नए अवसरों का माध्यम बन सकता है।
0: बहुत बड़ा बन सकता है। कईयों को गलतफहमी है कि सिर्फ खेलना ही एक माध्यम है रोजगार का। यू कैन बिकम अ कोच, आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे रूट्स है आपको स्पोर्ट्स से जुड़ने का। आप अगर पुराने भी खिलाड़ी है तो यू कैन ज्वाइन इन, और आप फिर वर्कफोर्स में रह सकते हैं, खेल से जुड़ सकते हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खेलते रहें, पढ़ते रहें, और अपना जो आत्मविश्वास है उसको किसी को कम करने का मौका ना दें। वो नशीले पदार्थों से दूर रहिए, और फिर जब आपका कोई दोस्त या साथी कुछ अच्छा कर दिखाता है तो आप उसका भी आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी हार को जीत में बदलें, और कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का।
0: थैंक यू।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, डीआरएम 854 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर, और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडा प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो की कड़ी ते 7:45 हो रहे हैं। आओ हुण सुणदे हां उर्दू वार्ता प्रोग्राम सब रंग।
4: कलाम शायर के सामईन को जाहिद अब्रोल का आदाब। अपने कलाम का आगाज़ मैं एक नज़म से करता हूँ, उन्वान है रोज़ बरोज़। ये नज़म एक बेरोज़गार आदमी का दिन कैसे गुज़रता है उसकी मंजर कशी है। 4 बंद हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। सो पेश करता हूँ कि सुबह जैसे किसी जोगी की उदास आँखों में शबनमी फूल खिलें, इंद्रधनुष लहराएं, और दर्द की लौ में झुलसते हुए ख्वाबों के बदन जब्त की कैद से पल भर को रिहा हो जाएं, और जोगिया भेस से चिपकी हुई अंधी कदरें अपने एमाल के हासिल को कहीं फेंक आएं, राख के ढेर में सोया हुआ शोला चटके बंद आँखों में भी उग

हुआ सूरज कटके, और रात के हूं में नहाता हुआ सूरज उभरा, हर तरफ आग बिछाता हुआ सूरज उभरा, दोपहर है या किसी जुल्म की तस्वीर कशी, ऐसा लगता है किसी चाक जबां हबशी के जिसमें उरियां को धुनकते हुए कोड़े बरसें, और कान पैहम किसी मुनसिफ की सदा को तरसे, भूखा कुत्ता किसी हड्डी पे पिला हो जैसे, अपना ही खून कोई चाट रहा हो जैसे। और शाम है कि शिद्दते गम से गुजरती हुई शाम आई है, एक वीरान कदा साथ उठा लाई है, मातमी आंख लिए जिस्म थका हरा सा, पेड़ जैसे कोई धरती से जुदा हो जाए, मातमी आंख लिए जिस्म थका हरा सा, पेड़ जैसे कोई धरती से जुदा हो जाए, टूट जाए किसी आशिक का कोई ताजमहल, शीशाए दिल से कोई अक्स खफा हो जाए, अजीस्त के कच्चे मकानों में कोई मौत पले, जैसे गुमनाम मजारों पे कोई शम्मा जले। और आखिरी बंद है रात, साल हा साल से भूखे किसी अजगर की तरह रात मुंह खोल के बैठी है न जाने कब से, अभी कुछ देर में मांगेगी ये दिन भर का हिसाब, अभी कुछ देर में उतरेगी रुखे गम से नकाब, आस का आखिरी आईना अभी चटकेगा, और अलमनाक अंधेरे का कफन ओढ़े हुए रोज की तरह हमें आज भी रोना होगा, नींद आए कि ना आए हमें सोना होगा, रोज की तरह हमें आज भी रोना होगा, नींद आए कि ना आए हमें सोना होगा। और अब आपकी खिदमत में एक गजल पेश कर रहा हूँ कि आबो दाना मिट्टी से आशियाना मिट्टी का, आबो दाना मिट्टी से आशियाना मिट्टी का, गुलशनों में गूंजे है गुनगुनाना मिट्टी का, मूरतें भी मिट्टी की, सूरतें भी मिट्टी की, रंगो बू में लिपटा है ये ज़माना मिट्टी का, और आने वाली नस्लें तो देख ही ना पाएंगी कूजा घर के हाथों में कसमसाना मिट्टी का, कूजा घर के हाथों में कसमसाना मिट्टी का। और शेर है कि बीज से बने पौधा इसकी कोख में पलकर, इसलिए तो जायज़ है पूजा जाना मिट्टी का, और जिस्म पर अकीदत की चादरें बहुत होंगी, जिस्म पर अकीदत की चादरें बहुत होंगी, सर पे एक दिन होगा शाम आना मिट्टी का, और जब किसी जनाजे के साथ साथ चलते हो, जब किसी जनाजे के साथ साथ चलते हो, क्या नज़र नहीं आता आना जाना मिट्टी का, क्या नज़र नहीं आता आना जाना मिट्टी का। एक और गज़ल पेश है कि मिसले नशाए शराब आते हैं, मिसले नशाए शराब आते हैं, दोस्त मानिंदे गुलाब आते हैं, और अच्छे आते हैं खराब आते हैं, दिन सभी मिसले हबाब आते हैं, और जाम दर जाम ही चढ़ता है नशा, जाम दर जाम ही चढ़ता है नशा, बाब दर बाब ही ख्वाब आते हैं, और सुस्त रहो खुशियाँ झिझकती हैं सदा, सुस्त रहो खुशियाँ झिझकती हैं सदा, हादसे पा बरकाब आते हैं। शेर है कि बेखुदी में भी तेरी याद आए जैसे बेख्वाबी में ख्वाब आते हैं, और ख्वाब में लिखे ख़तों के जाहिद, ख्वाब में लिखे ख़तों के जाहिद, ख्वाब ही में तो जवाब आते हैं, ख्वाब ही में तो जवाब आते हैं। और एक गज़ल और कि तेरी नमाज में जो मेरी आरती मिले, तेरी नमाज में जो मेरी आरती मिले, हिंदुस्तान को एक नई जिंदगी मिले, और तुझको खुदा से मुझको मेरे ईश्वर से दोस्त, हर पल नया सरूर नई रोशनी मिले, और नफ़रत दिलों में लेके जो रक्सा है हर गली, उनको मेरा पयाम मेरी शायरी मिले।

0: और उनका यही है दावा कि सूरज उन्हीं का है, उनका यही है दावा कि सूरज उन्हीं का है। मेरी ये जिद है सबको ही धूप एक सी मिले, मेरी ये जिद है सबको ही धूप एक सी मिले। जाहिद है जिनके जहन में मजहब ही का जुनून, काश उनको नई सोच नसीहत नई मिले। और पेशे खिदमत है कि इश्क क्या शय है और नशा क्या है, इश्क क्या शय है और नशा क्या है, एक ही तासीर है जुदा क्या है। और घूमते हैं खुदाई सर पे लिए, घूमते हैं खुदाई सर पे लिए, ये खुदा है तो फिर खुदा क्या है। और एक लिफाफे में बंद खत है वो, एक लिफाफे में बंद खत है वो, क्या पता उसमें अब लिखा क्या है। और जहन से दिल उलझता है हर पल, जहन से दिल उलझता है हर पल, दोनों मेरे मुकाबला क्या है, दोनों मेरे मुकाबला क्या है। और मुझको काफिर पुकारने वालों, मुझको काफिर पुकारने वालों, मुझसे पूछो मेरा खुदा क्या है, मुझसे पूछो मेरा खुदा क्या है। और हौसले बढ़ गए ख्यालों के, हौसले बढ़ गए ख्यालों के, ये ना सोचा कि आसरा क्या है। शोर मुँह जोर हो गया जाहिद, शोर मुँह जोर हो गया जाहिद, गीत के वास्ते बचा क्या है। शोर मुँह जोर हो गया जाहिद, गीत के वास्ते बचा क्या है। और इश्क क्या शय है और नशा क्या है, एक ही तासीर है जुदा क्या है, एक ही तासीर है जुदा क्या है। और आखिर में एक शेर कहता हूँ, कभी भी रुकता नहीं है ये इल्म का दरिया, किसी किताब को मत आखिरी किताब कहो, किसी किताब को मत आखिरी किताब कहो। और इसी गज़ल के एक दो अशार और, कि इसे ख्याल कहो फिक्र फ़न का ख्वाब कहो, इसे ख्याल कहो फिक्र फ़न का ख्वाब कहो, न शायरी को फ़कत दिल का इज़्तराब कहो। और कभी भी रुकता नहीं है ये इल्म का दरिया, किसी किताब को मत आखिरी किताब कहो। और ये जाँ का रोग बने या खिरद का दुश्मन हो, ये जाँ का रोग बने या खिरद का दुश्मन हो, जनू को जब्ते मुसलसल का इंकलाब कहो। और निकालती है ये दिल से सुखन का चश्माए आब, निकालती है ये दिल से सुखन का चश्माए आब, मय हलाल को मत फितनाए शराब कहो। तुम ही तो चुनते हो अपने निज़ाम के हाकिम, तुम ही तो चुनते हो अपने निज़ाम के हाकिम, अब इनको अच्छा कहो या इन्हें ख़राब कहो। और इन्हीं से मिलती है जाहिद उम्मीद जीने की, कि झूठे वादों को हरगिज़ न तुम शराब कहो, कि झूठे वादों को हरगिज़ न तुम शराब कहो। कभी भी रुकता नहीं है ये इल्म का दरिया, किसी किताब को मत आखिरी किताब कहो, किसी किताब को मत आखिरी किताब कहो। शुक्रिया।
1: हुण तुसीं सुन रहे सी उर्दू वार्ता प्रोग्राम सबरंग। आओ हुण समात फरमाइए एक गज़ल।

नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं जसप्रीत कौर, आकाशवाणी जलंधर ते हाजिर हाँ खास प्रोग्राम वोकल फॉर लोकल लैके ते करदी हाँ तुहाडा सब दा इस प्रोग्राम दे विच स्वागत। दरअसल वोकल फॉर लोकल दा अर्थ है अपने देश, अपने इलाके ते अपने लोकां वलों तैयार कीतियां वस्तां नूं जानना, उहनां दी गुणवत्ता नूं समझना अते इस दे नाल ही स्थानक उत्पादां नूं उत्साहित करना। जिवें कि जेकर कोई तुहाडे इलाके दा स्थानक कारीगर कोई वस्तु तैयार करदा है जां कोई महिला स्वै सहायता ग्रुप जिवें कि हाथ नाल बणियां चीज़ां तैयार करदी है, जिवें कि हो गया मिट्टी दे बर्तन, फुलकारियां, टोकरियां, रवायती खाण पीण दीआं चीज़ां जिन्हां दे विच अचार, चटनियां, पापड़ या फिर खेतीबाड़ी नाल जुड़े उत्पाद या कोई भी अजिही वस्तु जो स्थानक पद्धर उत्ते तैयार कीती जांदी है, तां साडा फर्ज़ बणदा है कि असीं उसनूं प्रफुल्लित करिए तां जो ओह देश विदेश विच चर्चित हो के वध तों वध आमदनी कमा सके।

0: ते दोस्तों तुहानू दस दईए कि साडे देश दे माणयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों नू संबोधन करदिया वोकल फॉर लोकल नू आत्मनिर्भर भारत नाल जोड़दिया कहा सी कि देश नू अपने स्थानक उत्पादां उत्ते माण करना चाहिदा है। वोकल फॉर लोकल नू आर्थिक विकास नाल जोड़दिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दा जिक्र कीता सी कि किवें एक जिले दी विशेष पहचान बनन वाला उत्पाद उस जिले दी आर्थिक पहचान बन सकदा है।
1: भारत हम सबका है, हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। भारत में बनी हुई, भारत के नागरिकों के पसीने से बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे, हम उस दिशा में आगे आए। यह हमारा सामूहिक संकल्प हो, देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे। दोस्तों, मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहा है। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे, हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए।
0: सो दोस्तों, तुसी माणयोग प्रधानमंत्री जी दा वोकल फॉर लोकल प्रति संदेश ते सुन लिया। ते आओ हुण तुहाडी मुलाकात करवाउंदे हां गुरप्रीत कौर जी दे नाल, जो कि वोकल फॉर लोकल दे सुपने नूं साकार रूप दे रहे ने। ते आओ फिर करदे हां गलबात गुरप्रीत कौर दे नाल कि ओह की काम करदे ने ते किवें वोकल फॉर लोकल दा संदेश दे रहे ने।
2: असीं अफजा वेंचर्स नूं स्टार्ट कीता सीगा 2018 दे विच
0: जी,
2: एक माइंड दे विच, एक माइंड सैट दे नाल कि लोकां नूं हेल्थ दे टुवर्ड्स वी जागरूक करना, अवेयर करना ते अपने एनवायरमेंट नूं वी सेफ रख के चलना
0: जी।
2: अज इस मोटो दे नाल असीं 2018 दे विच स्टार्ट कीता। बहुत सारे लोकां दा सानूं सपोर्ट मिलिया, लोकां ने सानूं एप्रीशिएट कीता कि तुसीं बहुत वधिया काम कर रहे हो। सब तो पहले प्रोडक्ट दे नाल असीं शुरुआत कीती सीगी सैनिटरी पैड्स दे नाल, जिन्नू असीं लैके चले सीगे इक मोटो हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस दे नाल
0: जी। क्योंकि बहुत बारी कह दिता जांदा कि जिहड़े मार्केट दे विच जिहड़े इन्ने ग्लैमराइज्ड है ना सैनिटरी पैड्स मिलदे ने, उहनां दे विच प्लास्टिक हुंदी, उह हेल्थ दे लई बिल्कुल चंगे नहीं। और तुसीं लोकल जलंधर शहर दे विच बैठ के मतलब सैनिटरी पैड्स बना रहे हो जो हेल्थ दे लई और फीमेल्स दे लई बहुत फायदेमंद ने।
2: बिल्कुल जसप्रीत जी, सही कहा तुसीं कि जिन्ने अज मोस्ट प्रोबेबली आपां ज़्यादा रेशियो दे विच अगर गल करिए कि मार्केट दे विच उह सैनिटरी पैड्स अवेलेबल ने जिन्हां विच 90-95% यानी कि 5-7 पॉली बैग्स जिन्ना प्लास्टिक पाया जाता है। ते साढ़े लिए तो सेफ नहीं है, एज अ बीइंग अ वूमेन साढ़े लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है, पर साढ़े इनवायरमेंट लिए भी सेफ नहीं है, क्योंकि एक सैनिटरी पैड नू डीकंपोज होने 500-800 साल लगते हैं। ते एक वीमेन अपनी लाइफ दे विच 15,000-17,000 सैनिटरी पैड यूज़ करती है। खुद सोच के देखो कि किन्ना वड्डा, ना चाहते हुए भी असं अपने इनवायरमेंट नू किन्ना वड्डा नुकसान पहुँचा रहे हैं
0: जी। बिल्कुल। और सैनिटरी पैड्स तो अलावा होर की चीज़ा ने जड़ियाँ तुसी बनाते हो
2: मैम? उस तो बाद साडा जोड़ा बेस्ट सैलर प्रोडक्ट है वह हैगा हेयर ऑयल, एशियन जड़ी बूटी हेयर ऑयल, जिदे विच असी ना तो कोई कैमिकल यूज़ कर रहे हैं, ना कोई संथैटिक कलर यूज़ कर रहे हैं, ना कोई संथैटिक फ्रेगनेंस यूज़ कर रहे हैं। अगर थोड़ा जा कंपैरिजन करके दसा तो अज बहुत सारे मार्केट दे विच ऑयल है जिदे पिछे तुसी इनग्रीडियंट भी पढ़ सकते हो, जिन्हों क्या जाता है मिनरल ऑयल LLP, शायद नाम सुनिया होगा
0: जी,
2: सुनिया ना
0: जी।
2: अज मोस्टली 90% तुसी देखो या 80-90% LLP का यूज़ किया जाता है। अज बहुत सारे लोगों ने मिनरल ऑयल भी नाम सुनिया, LLP भी सुनिया, पर यह नहीं पता कि वह बनते किदा, वह बेस की है। वह बेस हैगा क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में जो फिल्टराइज

0: उत्तराखंड इस विजन को हमेशा से जीता आया है। स्थानीय उत्पाद से लगाव, उनका उपयोग, उनको अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, ये यहां की परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड सरकार ने वोकल फॉर लोकल अभियान को तेज गति दी है। इस अभियान के बाद उत्तराखंड के 15 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है। यहां के बेडू फल और बद्री गाय के घी को हाल के दिनों में जीआई टैग मिलना सचमुच में बहुत गौरव की बात है।
1: सो दोस्तों, उम्मीद है तुहानू साडा अज दा वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम जरूर पसंद आया होवेगा। ते बिल्कुल जी, जेकर तुहाडे लागे भी कोई एहो जिहा शख्स है या कारीगर है या कोई ग्रहणी है जो घरों काम कर रही है ते अपने उत्पादां नू लोकां तक पहुंचाउणा चाहुंदी है, तां तुहाडा भी फर्ज बनदा है कि तुसीं उस दी मदद जरूर करो ते वोकल फॉर लोकल दे नारे नू साकार रूप दिओ।
2: हुणे तुसीं सुन रहे सी जन सेवा तो देश सेवा तक लोकल फॉर वोकल प्रोग्राम। इस दा प्रसारण आकाशवाणी पटियाला ते आकाशवाणी बठिंडा तो नालों नाली चल रहा सी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 854 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी ते 8:30 हो रहे हैं। हुण तुसी सुनोगे पंजाबी खबरां।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक विकसित भारत सिर्फ सारयां दे योगदान राही ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के हिस्से वजो सेवा यात्रियों नाल गलबात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आलमी अनिश्चिततावां के बावजूद भारत सब तो तेजी नाल वध रही वड्डी आर्थिकता बनिया होया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधारा की घाट कारण अंतरराष्ट्रीय भाईचारे में निराशा वध रही है। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने जल सुरक्षा यकीनी बनाने लिए समूहक यत्ना का सदा दिता है। भारत के लंबी दूरी के दौड़ा कुलवीर सिंह ने अज एशियाई खेडों में मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में चांदी का तमगा जितया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सारयां दे योगदान अते हिस्सेदारी नाल ही विकसित भारत दा संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान तहत वाराणसी तों वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राही गलबात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हां च जीवन नूं दिशा देण वालियां कदरां कीमतां पैदा कीतियां, जदकि काशी ने उन्हां कदरां कीमतां विच सेवा दे अणगिणत रंग जोड़े। उन्होंने खुशी जाहिर की कि नौजवान भी सेवा के वक् वक् रंगा नाल इस यात्रा विच वध चढ़ के हिस्सा ले रहे ने।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा

0: लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने किया है कि आलमी अनिश्चितताओं के बावजूद 12.8% दी विकास दर हासिल करके सब तो तेजी नाल बढ़ रही प्रमुख आर्थिकता बनिया होया है। श्री शाह ने आज ग्रेटर नोएडा विच उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन करने तो बाद ही गल कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगवाई वाली सूबा सरकार की शलाघा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था और सरगर्म शासन प्रणाली सदका आज उत्तर प्रदेश विच निवेश ले एक आकर्षक माहौल बनिया होया है।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं, दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस मौके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज देश विच एक निर्माण केंद्र वजो उभरिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अर्थपूर्ण सुधार लिए लिखित तजवीज की लोड़ है ते नाल ही चेतावनी दी कि लिखित मसौदे तो बिना गलबात सिर्फ समा खरीदने ते प्रक्रिया विच देरी दे बराबर होगी। डॉ जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विच सुधारा की घाट कारण अंतरराष्ट्रीय भाईचारे विच निराशा बढ़ रही है। मंत्री न्यूयॉर्क विच 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा दे मौके ते मंत्री पदरी सैशन विच बोल रहे सन। संस्थागत प्रगति नूं रोकण वालियां प्रक्रियात्मक रुकावटां नूं बारे विदेश मंत्री ने कहा कि संस्थागत तब्दीली दी समूहिक इच्छा तेज हो गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि यह भावना बढ़ रही है कि संयुक्त राष्ट्र नूं बदलना चाहिए अते चौके विश्व दीआं हकीकतां नूं बेहतर ढंग नाल दर्शाउणा चाहिए है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुधारा का विरोध करने वाले देश इस नूं मजबूत करने के यत्नां की हमायत किए बिना संगठन की वरतों जारी नहीं रख सकते। डॉ जयशंकर ने इस विचार में विरोध कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुधार सर्वसम्मति राही प्राप्त किया जा सकता है। लोकतंत्री फैसले लैण दे नाल समानता बनाते हुए उन्होंने कहा कि देशों नूं अपने विचार रखने लिए सुतंत्र होना चाहिए जिस तों बाद वोटिंग राही फैसले ले जाने चाहिए ने। उन्होंने कहा कि सुधार प्रक्रिया नूं अगे वधाउण लई जरूरी है। उन्होंने दीआं टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र दे सकत्तर जनरल अंतोनियो गुतरिस वल्लों सुरक्षा कौंसल भी सुधार की मांग करते हुए यह कहने दरमियान आईया ने कि इसने अजोके विश्व का बेहतर चलकारा देने वाला होना चाहिए है। भारत लंबे समय तो सुरक्षा कौंसल के सुधारा की वकालत करता है जिस विच इसकी स्थायी और गैर स्थायी मैंबरशिप दोवां का पसार शामिल है। विदेश मंत्रालय विच पश्चिमी मामलों बारे सकत्तर सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सैशन दौरान समुद्र के पानी के पद्धर विच वाधे कारण पैदा हुए होंद के खतरियां नाल निजिठण बारे उच्च पदरी भरवीं मीटिंग विच भारत की नुमाइंदगी की थी। श्री जॉर्ज ने समुद्र के पानी के पद्धर विच वाधे बारे संयुक्त राष्ट्र ऐलाननामे नूं अपनाए जाने का स्वागत किया ते साहली इलाकियां नूं जलवायु तब्दीली के प्रभावों तों बचाउण ते आफत रोधक बुनियादी ढांचे के खेतर विच भारत के यतनां ते झानना पाया। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह ने हाल ही विच आए हड़ां तो बाद एक हिमालयी जलवायु नेटवर्क बनाने की तजवीज रखी है। नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी अगवाई नेपाल, भारत और चीन वालों सांझे तौर पर की जानी चाहिए है। प्रधानमंत्री शाह ने कल रात संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सैशन विच किया कि वधदा तापमान हिमालय चगिरदा सिलसिले नूं अस्थिर कर रहा है। उन्होंने तिना देशों विच सैटेलाइट डेटा, तकनीकी मुहारत और शुरुआती चेतावनी जानकारी सांझी करने लई इस नैटवर्क की वरतों करने की तजवीज रखी। पिछले महीने की 26 तरीक नूं नेपाल तिब्बत सरहद के नेड़े बर्फ और चट्टाना के खिसकण कारण नेपाल विच एक वड्डा हड़ आया सी। इस आफत विच हुण तक 1452 लोगों की मौत हो चुकी है जदों कि 4700 तों 6000 लोग अजे भी लापता दसे जा रहे ने। पंजाब स्टेट रेडक्रॉस ने अज मनुखी आधार से हड़ प्रभावित नेपाल लई राहत समगरी की अपनी तीजी और सब तो वड्डी खेप भेजी। पंजाब के राज्यपाल और स्टेट रेडक्रॉस के मुखी श्री गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ के पंजाब लोक भवन तो करीब 52 टन जरूरी राहत समगरी लैके जाने वाले 7 वड्डे ट्रकों को हरी झंडी दे के रवाना किया। श्री कटारिया ने कहा कि यह समगरी नेपाल रेडक्रॉस सोसायटी वालों सांझी की गई लोड़ सूची मुताबक खरीदी गई है। इस विच कंबल, तरपाला, सोलर लाइटा और इमरजेंसी राहत सप्लाई ते जनरेटर सेट भी शामिल ने।
3: अब तक हम दो बार भेज चुके थे, 12 लाख एक बार सामान भेजा था, उसके बाद हमने 38 लाख का भेजा। आज हम लगभग 52 टन, लगभग 1.5 करोड़ रुपया का सामान जो है ना नेपाल के लिए

0: ये एक बहुत बड़ी सहायता राशि विभिन्न प्रकार का जो आज की तारीख में आवश्यकता है। अब की बार कुछ जनरेटर भी हम भेज रहे हैं ताकि उनको कहीं बिजली के, और इसी तरह से हमने सोलर जो है ना लाइटें भी भेज रहे हैं ताकि उनको इसकी सुविधा भी मिले।
1: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने किया है कि पानी की सुरक्षा नागरिका सरकार ते सनता समेत सारे हिस्सेदारा की सांझी जिम्मेवारी है। आज नवी दिल्ली विच नौवें भारतीय अंतरराष्ट्रीय पानी हफ्ते 2026 के समाप्ति समारोह नूं संबोधन करदे उन्होंने पानी की संभाल विच जनतक हिस्सेदारी की महत्ता ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि पानी नाल संबंधित चुनौतियां नाल नजिठना सिर्फ देशों ते संस्थावां दे सहयोग नाल ही संभव है। जल शक्ति मंत्री ने निरंतर नतीजे प्राप्त करने लिए जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ते जल संचय जन भागीदारी वर्गियां योजनावां नूं लागू करन विच जनतक हिस्सेदारी दा सदा दिता। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 तहत अक्तूबर तो वख-वख राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशां दे 70,000 देहाती नौजवानों नूं हुनर सिखलाई दित्ती जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एक अजिही योजना है जिस विच देहाती खेतरां दे गरीब नौजवानों नूं रोजगार संबंधी हुनर सिखलाई दित्ती जांदी है। सिखलाई दी म्याद 3 to 12 महीनियां तक हुंदी है। भारत की मोरी खाद उत्पादक किसान सहकारी संस्था कृषक भारती सहकारी लिमिटेड क्रिपको ने माली साल 2025-26 लिए 824 करोड़ रुपए तो वधा टैक्स तो पहला दा मुनाफा दर्ज किया है। क्रिपको ने दस्सिया कि इस समय दौरान इसने 21,34,000 टन यूरिया और 12,39,000,000 टन अमोनिया का उत्पादन किया। खेडां विच भारत की लंबी दूरी के दौड़ा गुरवीर सिंह ने अज एशियाई खेडां विच मर्दां की 10,000 मीटर दौड़ विच चांदी का तमगा जितया है। भारतीय एथलीट बारानिका एलांगोवन ने औरतों के पोल वॉल्ट विच कांसी का तमगा जितया है। एशियाई खेडां विच पोल वॉल्ट मुकाबले विच देश का पहला तमगा है। इस नाल भारत के कुल तमग्या की गिनती 23 हो गई है जिस विच 2 सोने के 9 चांदी के और 12 कांसी के तमगे शामिल ने। आखिर च खास खबरें एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक विकसित भारत सिर्फ सारे के योगदान राही ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के हिस्से वजो सेवा यात्रियों नाल गलबात की थी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आलमी अनिश्चितताओं के बावजूद भारत सब तो तेजी नाल बढ़ रही वड्डी आर्थिकता बनिया होया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विच सुधार की घाट कारण अंतरराष्ट्रीय भाईचारे विच निराशा वधी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल सुरक्षा यकीनी बनाउण लई समूहक यतना दा सदा दित्ता है। भारत के लंबी दूरी के दौड़ाक गुलवीर सिंह ने अज एशियाई खेडां विच मर्दां की 10,000 मीटर दौड़ विच चांदी का तमगा जितया है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 बजे होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 854 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी ते 8:40 हो गए ने। आओ हुण सुनदे हां पंजाबी गीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर

0: करके हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
0: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
3: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
4: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
2: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा को बढ़ाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर

0: को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 एसोल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
2: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
0: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहां

0: और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
1: 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलेंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says rural transformation and women's self-reliance mark India's progress, highlights importance of social service, social reform and positive change. Centre extends AFSPA in disturbed areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for another 6 months. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for text-based negotiations to ensure meaningful UN reforms, criticises those opposing change. And at Asian Games in Japan, India's overall medal tally reaches 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze. Pair of Kamaljeet and Suruchi Singh clinch gold in mixed team 10-meter air pistol event. Long-distance runner Gulveer Singh wins silver in men's 10,000-meter race. Baranika Elengovan bags bronze in women's pole vault. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction today with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasised the importance of social service, social reform and positive change. He said, Vikasit Bharat can be realised only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that

0: You cannot create manufacturing capacity in this country. So capital goods is very, very critical. So India is again pursuing this very aggressively. But like I said, keep in mind, I do not say it to justify slow progress, but we are starting from a very low base. So it takes time. The intent is there. The effort has to be amplified.
1: Finally, my question is that the development of intellectual property, because a lot of that is linked to processes and how systems actually work to manufacture something, licensing agreements. What kind of innovation are we seeing there to ensure that we are competitive?
0: It's something that India is visiting with a lot of energy at this point of time. Like I gave you the example of startups in space. That's a great point to test the success of what, you know, this India's ability to create its own intellectual property. We are seeing it there. But in other sectors, if you ask me, no. Where the, you know, intellectual property is held by foreigners or foreign countries or entities. So India has not moved up. But again, it cannot happen in isolation. So you'll see this progress happening, say, from the education level, then to engineering, higher education. And then, you know, the industry, government, academic complex is still being created. There are pockets where all of this is happening brilliantly. So if you 10 years ago, if you ask me, did you see so many examples? No, they were isolated. Everywhere you see success stories of student entrepreneurs, professor entrepreneurs, all coming up with their own capabilities and intellectual property claims. But the momentum has to be accelerated, undoubtedly.
1: Well, thank you so much, Anil Padmanabhan, and providing us with an in-depth understanding of what it took for the Make in India to reach 12 years, transforming India's manufacturing landscape, 25th September, marking 12 years of Make in India.
0: Thank you for having me, Arjun.
2: You were listening to a discussion on 12 years of Make in India, transforming India's manufacturing landscape. The participants were Anil Padmanabhan, economic analyst, and Arjun J. Chaudhary, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official.
3: Spotlight.
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, टीआरएम 864 किलोहर्ट्स और डीटीएसजी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी 9:30 हो रहे हैं। लो हुण पेश है पंजाबी वार्ता प्रोग्राम विचार चर्चा। अज दा विषय है साहित्य नूं प्रफुल्लित करन च साहित्यक संस्थावां दी भूमिका। इहदे विच भाग लै रहे ने सतनाम सिंह मानक, जसपाल मनखेरा ते प्रोफेसर सुरजीत जज ते जिस दे संचालक ने डॉक्टर आशा सिंह कुमन।
5: अज दे इस विचार चर्चा प्रोग्राम विच मैं डॉक्टर आशा सिंह कुमन आप सब नूं जी आया कहना। अज दा विषय है साहित्य नूं प्रफुल्लित करन विच साहित्यक सभावां दी भूमिका। और इस विचार चर्चा च मेरे नाल हन सतनाम मानक जी, जो कि मीडिया विच होण करके पंजाब ते पंजाबों बाहर भी ईवन पंजाबी साहित्य विच खास तौर पर जो उतरा चढ़ा आउंदे रहे ने जा आ रहे ने उन्हां बारे ये बखूबी जानते ने। मेरे नाल दूसरे जो अज दी विचार चर्चा दे विच साहित्यकार शामिल ने सुरजीत जज जी, प्राध्यापक होने दे नाल नाल प्रगतिवादी कही जांदी कविता दे विच श्रोमणी कवि भी सन्मानित हो चुके ने, और केंद्रीय लेखक सभा प्रगतिशील जो लिखारी संघ है और जिहड़ी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसीएशन है उहदे जनरल सकत्तर दे तौर ते जिथे ये पंजाब दीआं सभावां नाल संबंधित ने उत्थे ये हिंदुस्तान दे वख-वख सूबिआं विच भी जिहड़ा प्रगतिवादी लहर है उहदे नाल जिहड़ीआं सभावां जुड़ीआं ने उहनां दा इहनां नूं तजर्बा है। इस विचार चर्चा विच जो तीसरे विद्वान साहित्यकार साढ़े नाल बैठे हैं वो हैं जसपाल मानखेड़ा जी, जो कि प्रमुख तौर पर नावलकार ते कहानीकार हैं। और ये जिथे पंजाबी साहित सभा बठिंडा नाल लंबे समय तो जुड़े हुए ने उत्थे देश पद्धर ते भी जिहड़ी साड़ी दिल्ली साहित्य अकैडमी है उहदे

0: finishing fifth. Neeraj Kumar had earlier been eliminated in the eighth place, bringing India's campaign in the event to a sad end. With this, shooting remains the highest contributor in the total number of medals contributed by a specific event in the ongoing Asian Games 2026 so far, with a total of 10 medals coming from the world of shooting. This includes 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
1: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
2: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.7 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों की 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और प्रवीण कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा 6ठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। विशाल टेके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
1: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
3: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
1: The Indian team is going strong in squash. Shabab Anwar has more.
2: योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी योशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोलिनो और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम 4 में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय योशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग हांग टैंग की चुनौती होगी। ये योशना का एशियाई खेलों में 6ठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-2 11-5 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4 11-3 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारतीय वीर चोटरानी को 41 मिनट में 6-11 11-8 11-3 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: Was another great day for India in kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
2: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही

0: वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
1: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
0: Badminton ne aaj Bharat ko sabse bada dhachka tab laga jab gat vijeta Satvik Sairaj aur Chirag Shetty purush doubles ke pehle hi round mein bahar ho gaye. Bhartiya jodi ko Thailand ke Pakkapon Tiresh Sakul aur Pichai Sufun ki jodi ne 21-12, 19-21, 21-14 se haraya. Satvik Chirag ne pichli baar Asian Games mein swarn padak jeeta tha lekin is baar pehle hi round mein bahar ho gaye. Bharat ki Tanisha Crosto और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार जीत की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20, 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7, 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइनलू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में पुरुष वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elham Razoor, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200-meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200-meter butterfly. He did not start in the 100-meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50-meter breaststroke and 400-meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50-meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th, respectively, in the 400-meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
3: बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार का सफर राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हो गया। पहले बात सचिन की, उन्होंने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी। सचिन ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार और सटीक पंचों के साथ मुकाबले पर दबाव बनाए रखा। अबू जाजे ने आखिरी दौर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई। भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं। वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले

0: से मात दी। प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली। यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यही समाप्त हो गया।
1: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
2: भारोत्तोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गयी। निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही।
1: Indians were in action in Canoe. Sakshi Manwal has all the details.
3: It was a disappointing day for India in Canoe Sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished 5th in the men's kayak double 500 meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished 3rd among 4 pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500 meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished 4th among 5 pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500 meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
1: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
2: भारत को तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य, हिमांश सिंह, तेजस पाटिल और कर रहे थे। इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया। इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर।
1: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Amrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samay Rabou, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. India was striving for a medal in equestrian. Let's hear what Shahid Azmi had to say.
0: Asian Games 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जय सूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
1: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
3: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner, and they ultimately went on to win the series 2-0.
1: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
3: भारत की पोजीशन मेडल टेबल पर 12th स्पॉट पर है। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त 22 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, जो क्रिकेट और शूटिंग से आए हैं, 9 सिल्वर हैं, जिसमें से 5 शूटिंग से, 1 वेट लिफ्टिंग से, 2 एथलेटिक्स से और 1 वुशु से आया है, और 11 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस से आया है। नाउ लेट्स आल्सो हैव अ लुक एट द टॉप 3 पोजीशंस इन द मेडल टेबल। पहला स्थान लिया हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विद अ टोटल ऑफ 157 मेडल्स, जिसमें से 97 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसके पास कुल मिलाकर 113 मेडल्स हैं, 27 गोल्ड, 42 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके पास कुल मिलाकर 64 मेडल्स अभी तक हुए हैं, जिसमें से 13 गोल्ड है।

वाह जी वाह। कई गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। तो शायद किसे करके संगीत साड़ी बहुत खूबसूरत जिंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि वो महसूस हो जाते हैं। मैं पहला भी कहा, कई बार ऐसी चीज़ कह नहीं पाते उदा जो सानू संगीत सुन के उन चीज़ मिल जाती है, कह हो जाती है। सो जेकर तुसी भी किसी मुहब्बत करते हो, प्यार करते हो, या कुछ कहना चाहते हो, किसी तो माफ़ी मंगना चाहते हो, जे खुद नहीं हुंदा घट्टो घट उन्हू संगीत हो जाए, गीत हो जाए भेज दो। अजकल तो नवा मॉडर्न जमाना हो गया, तुसी इंस्टाग्राम के उत्ते ना सोशल मीडिया से फेसबुक उत्ते यह जी रीलां भेजनिया शुरू कर दिखाई लोगों ने। हालांकि वह भी बहुत सोहना तरीका, उहदे विच जिहड़ा म्यूजिक यूज हुंदा, गीत संगीत का जिहड़ा सिलसिला है वह दस दिंदा, सामने वाले बंदे दे भाव भी दस दिंदा। कदे सफर विच साथी, कदे इकलेपन विच दोस्त, ते कदे खुशी दे पलां विच जशन बन जांदा संगीत। एक छोटी जी गल मैनूं याद आ गई कि जिंदगी दे हर रंग दी अपनी एक धुन हुंदी है, बस उसनूं सुनन वाला दिल चाहिए। सो दोस्तों हुण वारी है एक होर सोहणे जे खूबसूरत जे गीत दी, पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ जयशंकर ने कहा

कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण में जनभागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बिल्कुल
1: बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: ओके जी, बाय
1: थैंक यू
0: बाय।
1: जी, थैंक यू।

तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। गुरबाणी दे इस फरमान तो पाव है कि सिरजनहार प्रभु सबना दी प्रतिपालना करता है सबना दा साई है सारे जीव उस दे आसरे ही हन। ओ प्रभु सदा सृष्टि दे जीवां नूं पालदा है।

0: तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सृजनहार, जिन पैदायस तू किया सोई दे आधार। इस शब्द का गायन किया सी भाई मेहताब सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। अकाल पुरख का मुढ़ कदीम तो ही सुभा है कि वह सबना का माँ प्यो होण करके सबना की सार लैंदा है। हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक, ओ प्रभु ही सबनी थाई रख्या करन वाला है। मन विच विचार आउंदा है कि ओ प्रभु किस स्थान ते वसदा है। बाणी विच फरमान है कि सत संगत साध संगत ही प्रभु दा निवास स्थान है, क्यों जो साध संगत विच संत जन प्रभु प्यारे भगत साध संग करदे हन, ते करता भी उत्थे ही वसदा है। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। प्रभु ते पूरन भरोसा रखण वाले भगतां दा अकाल पुरख ही सहाई है, राखा है, उन्हां दी रास पूंजी दी रख्या भी करदा है। ऐसे भगत संत जदों गुरु अगे कोई भी अरजोई करदे हन तां ओह परवान हुंदी है, ते उन्हां दी इज्जत पद दी राखी ते रास भाव नाम रूपी पूंजी दी रख्या भी सृष्टि दा सरबुच ते मालक प्रभु आप करदा है। सुनदिआं नवप्रीत सिंह होरां पासों वार्ता, रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास।
1: विचार अधीन यह पावन वाक बाणी दे बोहित, महान उस रइए श्रोमणी शहीद गुरु अर्जन देव जी ने बिलावल राग विच उचारिया है अते गुरु ग्रंथ साहब दे अंग 816 ते सुभायमान है। इस पावन वाक अते समुचे शब्द राही गुरु साहिब सोझी बख्शदे हन कि अकाल पुरख अगे बेनती करन द्वारा मनुख नू कोई औकड़ मुश्किल पेश नहीं आउंदी है। वाहिगुरू अपने भगतां दी रास पूंजी दा आप रखवाला है। सारे गुणा नाल भरपूर प्रभु दा नाम सिमर के सारे कम सफल हो जांदे हन। परमात्मा आप साध संगत विच वसदा है अते भगत जना लई साध संगत एक अस्थान है जिथे बख्शिशां दी कदे भी तोट नहीं आउंदी है। इत्थे हुण विचार करन दा यतन करदे हां कि ओह अकाल पुरख रखवाला किस तरह है अते भगत दी असल रास पूंजी की है। गुरु ग्रंथ साहिब जी अनुसार निरसंदेह परमात्मा सारी कुदरत दा करता भी है अते पालनहार है। उस दे दैवी हुक्म इंसाफ पसंद भी हन अते सदीवी भी। गुरबाणी विच अकाल पुरख नू सर्व व्यापक अते सब तो वड्डा रखियक मन्या गया है। ओह हर मुसीबत विच अपने सेवकां दी रखिया करदा है, क्योंकि प्रभु दी कीर्ति करन वाले भगत ही प्रभु दे मन नू प्यारे लगदे हन। गुरु नानक देव जी आसा दी वार विच प्यारे बचन करदे हन, भगत तेरा मन भाम दे दर सोहन कीरत गाम दे। जिमें कि वाहिगुरु ने शुद्ध चित्त वाले भगत प्रहलाद की रखिया नरसिंह रूप धार के हरनाखश नू अपने नहुआ नाल चीर के कीती। सुथर चित भगत हित भेख तरियो, हरनाखश हरियो नख बिदार जियो। परमात्मा सिर्फ बाहरी दुश्मना तो ही नहीं सगो मनुख दे अंदरले पंज विकारां काम क्रोध लोभ मोह अते हंकार तो भी रखिया करदा है। इस वास्ते अरदास करदा है। गुरबाणी फरमान है पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे, खेद करह अर बहुत संतावह आयो सरण तुहारे। गुरु अर्जन देव जी गौड़ी राग विच सोझी बख्शते हन कि जदों गुरु दी आत्मक अडोलता देन वाली ते सुख देन वाली बाणी दी बरकत नाल भगत जना ने ओह पंज वड्डे झगड़ालू जित लए हन। जीत लए ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन पया प्रगासा पाया पद निरबाणी। ओह बेअंत अकाल पुरख इस संसार दे डर ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਜਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਹਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਤਾ ਭਾਉ ਕਿਹਾ ਕਾਲਾ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖੰਡ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਪਰਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਪਸਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਆਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੇ ਪਰਮਾ

काहे मन तू डोलता हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख विसारण हार। इस शब्द का गायन किया सी भाई जसबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

दीपा लोहा मंडला खंडा और भंडांड जेर जूत पूजा काणी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए।

पढ़ पढ़ के डील दिए पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड्डिए खात पढ़िए जीते बरस बरस पढ़िए जीते मास पढ़िए जीते।

बस्तर ना पहरे एनिस कह रहे मोर भी गुता क्यों जागे गुरबिन सुता पागो पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण ना वे किछ थाए ना पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंत न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुपाए।

दुख दारू सुकरो पया जा सुखताम न होई, तू करता करना मैं ना ही जा हो करी ना होई। भले हारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहो, जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर आ। तू सच्चा साहिब सिफत वाले जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बातां।

चरण तपर सकियत चरण गुर अमर पवल रे, हाथ तपर सकियत हाथ लगे गुर अमर पे, जीत पर सकियत जी गुर अमर पनिजे, नैन तपर सकियत नैन गुर अमर पखीजे, सरवण तपर सकियत सरवण गुर अमर सुनिजे, सकियत सो हियो जित ही बसे गुर अमरदास, निज जगत पित सकियत सो सिर जाल पणे जो सिर निवे गुर अमर नित। जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्मानी, जे मत त्रिलोचन चित भगत कबीरे जानी, रुकमा गद करतूत राम जंपो नित पाई, अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई, तैं लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी, जुगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पा।

चित चितवां अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं। सर्व चिन तुझ पास सात संगत हों तको, तेरे हुक्म पवे निशां तो करो साहब की सेवा। जब गुरु देख

कहते रहूं। गुर ज्ञान अर ध्यान तत् सो तत् मिलावे, सच सच जानिए एक चित्ते लिवलावे। काम क्रोध वश करे पवन उडंत न तावे, निरंकार कै वसै देश हुकम बुझ विचार पावे। कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो, गुर मिलियो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो। अजय गंग जल टल सिख संगत सब नावे, नित प्राण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे। अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो, गुर अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर कुर गुर रामदास हर पै कयो, हर बंस जगत जस संचर्यो सो कवन कहे सिरे गुर मोयो।

जागे और न जाहे महातम मैं, अवतार उजागर यान कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन

किया। कल मैं वेद अथर्वण हुआ, नाव खुदाई अलहो भया, नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुरक ठाणी अमल किया। चारे वेद होए सचियार, पढ़े गुणे तिन चार विचार, पाओ भगत कर नीच सदाए, तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी।

0: शीश नवाए क्या थी है जरद सुदे जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिलपू जिस बगल समाधं मुख झूठ बिपु खंसारं त्रैपाल तिहाल बिचारं गलमाला तिलक ले लाटं दोए धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं करमं सब फोकट निश्चौ करमं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ो।